दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है आशा भोसले और किशोर डा की आवाज़ में आप सुनेंगे, दूरियां नज़दीकियां बन गई अजब इश्तफाक है।

दूरियां नज़दीकियां बन गई जब इस दफा कहे आशा भोसले के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। जवान तुम हो जवान हम है ये प्यार तुमसे हो गया है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले ज़रा मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़माने वाले हमें इतना गरीब समझते हैं, ज़माने वाले हमें इतना गरीब क्यों समझते हैं, उनको मालूम नहीं कि हम दर्द की दौलत से मालामाल हैं।

अभी आप सुन रहे थे जवान तुम हो जवान हम है, ये प्यार तुमसे हो गया है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हम पेश करते हैं यार मेरे मेरी बाहों में आ जा। और ये गीत हम पेश करके हैं खास करके दो व्यक्ति के वास्ते, यानि विद्या जी और संता जी के वास्ते, जबकि ये दोनों प्रोग्राम मिलकर सुन रहे हैं। तो चलिए ये गीत हो जाए उन दोनों के नाम।

मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हमने पेश किए हैं यार मेरे मेरी बाहों में आजा, और ये गीत हमने पेश किए हैं विद्या जी और शांता जी के वास्ते जबकि ये दोनों प्रोग्राम सुनते हैं। दिल बेकरार सा है

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दिल बेकरार सा है। मोहम्मद रफ़ी प्रोग्राम में फिर से आ रहे हैं। सुनने वालों, जियाओ जियाओ जिया, कुछ बोल दो।

अभी आप सुन रहे थे जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, गुमराह है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, फ्रॉम द मूवी गुमराह से हमने पेश किए हैं

फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर नतीलक उक्त बुलाइया इंटरनेट के लहर द्वारा आप ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतुल्य तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतुल्य वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, अनतुल्य बुद्धांक थोरतलाइस्त्रन। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन वाहन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, खास फरमाई से हो या तो ज़रूरी खबरें हो या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो और गमन हो और गवर्नमेंट इवेंट और खनिशात और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ज़रूर ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमकार पे चमकार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बेयंस ऑफ द ईस्ट प्लांट्स। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी बेल टेनिस कंटोर ऑफ न्यूज 73562 2047। बंत यू नो खेल फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टेनिस कंटोर यूरोप न्यूज 73562 2047। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के इस बिग बिग हैप्पी फैमिली में आकर भी शामिल हो जाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो, रिक्लाम बनाते रहना है। सॉफ्ट टू ऑल ऑफ यू, हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम की ओर। और जैसे मैं आप सभी से कहा, अब से लेकर 11:30 बजे रात्रि तक आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। हम पहुंच चुके थे बीते हुए हफ्ते फिल्म हलचल के तक। और देखा जाए ये फिल्म हलचल रिलीज किया गया था 1985 तक। दिलीप साहब ने नरगिस जी के साथ इस फिल्म में काम किया है और उस जमाने के मशहूर अभिनेत्री सितारा। म्यूजिक बाय सज्जत हुसैन। और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को ये अति सुंदर बयान लता जी के मधुर आवाज में। आज मेरे नसीब मुझको रुला दी।

लुटा दिल मेरा हाय आबाद होकर ऐ फिल्म हलचल 1951 क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी। एक और अति सुंदर बयान फ्रॉम द सेम मूवी हलचल आप सुनेंगे। हाय सच के तेरे ओ बांके मेरे लता जी एक बार फिर।

क्या बात है, अति सुंदर पुराना कव्वाली सुना दिया आप सभी को। पुराने जमाने के मशहूर गाने वाली राजकुमार दुबे जी, म्यूजिक सज्जत हुसैन के साथ पर। तो वक्त हो चुका है हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी ने कुछ दोस्ती के शेर शायरी, तो कुछ सुना देता हूं। अर्ज किया है कि कुछ रिश्ते अनजाने में ही हो जाते हैं, कुछ रिश्ते अनजाने में ही हो जाते हैं। पहले दिल फिर जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कहते हैं उस दौर को प्यार, जिसमें लोग जिंदगी से भी प्यारे हो जाते हैं, उसे दोस्त कहते हैं। गीत की जरूरत महफिल में होती है, गीत की जरूरत महफिल में होती है, प्यार की जरूरत दिल में होती है। बिन दोस्ती के अधूरी है ये जिंदगी, बिन दोस्ती के अधूरी है ये जिंदगी, क्योंकि दोस्त की जरूरत हर पल महसूस होती है। इश्क और दोस्ती मेरी जिंदगी का गुमान है, इश्क और दोस्ती मेरी जिंदगी का गुमान है। इश्क मेरी रूह है तो दोस्ती मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूं फिदा सारी जिंदगी, इश्क पे कर दूं फिदा सारी जिंदगी, मगर दोस्ती पे मेरा इश्क कुर्बान है। क्या बात है, वाह। तुमसे दूरी का एहसास जब सताने लगा, तुमसे दूरी का एहसास जब सताने लगा, तेरे साथ गुजरा हर लम्हा याद आने लगा। जब भी तुम्हें भूलने की कोशिश की, जब भी तुम्हें भूलने की कोशिश की, ऐ दोस्त तू दिल के और पास आने लगा। क्या बात है, वाह। मिलना बिछुड़ना सब किस्मतों का खेल है, कहीं नफरत तो कहीं दिलों का मेल है। बिक जाए है हर रिश्ते इस दुनिया में, बिक जाए है हर रिश्ते इस दुनिया में, सिर्फ दोस्त ही दोस्त का काम काम आता है। क्या बात है, वाह। बड़े अजीब है ये जिंदगी के रास्ते, बड़े अजीब है ये जिंदगी के रास्ते, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग दोस्त बन जाते हैं। मिलने की खुशी दे या ना दे, मिलने के खुशी दे या ना दे, बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। ये था कुछ शेर शायरी हमारे शेर्स की चाहने वालों के लिए, डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई सेटी फ्रॉम माएस्ट्रो भूपेंद्र। अगला बयान ओ बिछड़े हुए साथी, फ्रॉम द मूवी हलचल निहरी एन फेफ्टर, क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी सज्जत हुसैन के साथ पर।

बिछड़े हुए साथी क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और कुछ रफ़ी साहब जी के आवाज़ में भी आवाज़ में कुछ लफ्ज़े आप सुने एक फिल्म हलचल 1951। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो नगमे आप सुन रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। तो हम पहुंच चुके थे फिल्म हलचल तक, उसी फिल्म में से सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं। अगला बयान प्रीत जता के मीत बना के भूल न जाना, क्या बात है। एक बार फिर वही मशहूर संगीत कार के जोड़ी सिंगिंग कपल क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी और पद्म श्री मोहम्मद रफ़ी साहब जी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग प्री जता के मीत बना के भूल नहीं जाना। क्या बात है ऐ फिल्म हलचल। लता मंगेशकर जी और रफी साहब जी ने सुना दिया आप सभी को अति सुंदर बयान। तो फिल्म हलचल का एक आखिरी सॉन्ग आप सुनेंगे और इस बार लाते हैं पुराने जमाने के मशहूर गाने वाली द ग्रेट शमशाद बेगम जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे सो रहे है बेखबर।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सो रहे है बेखबर, आखिरी बयान था इस फिल्म हलचल मशहूर गाने वाली पुराने जमाने के दिग्गजे शमशाद बेगम जी के मधुर आवाज में। तो मैं प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे फिल्म हलचल के आप सुन चुके, अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक सुपरहिट मूवी जो रिलीज किया गया था इन 1951 ऑल्सो, फिल्म दीदार। रोजाना लोग इस मूवी का नगमे चलाते रहते हैं, क्योंकि जितने नगमे इस मूवी में चला सभी सुपरहिट साबित हुए। तो उसी फिल्म्स में से आप सॉन्ग्स सुनेंगे फिल्म दीदार। संगीतकार नौशाद अली के मधुर साज पर सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को, जरा दिल थाम के बैठिए। सुरों का बादशाह किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी, वन ऑफ माय फेवरेट रफी साहब जी का, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, आप सभी प्रिय प्रिय सुनने वालों के नाम।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग हुए हम जिनके लिए बर्बाद. बॉलीवुड क्लासिक हिट सॉन्ग बाय पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी, नौशाद अली के साइज पर एक फिल्म दीदार 1951. अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं दो मशहूर महान गाने वाले हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और महान आवाज के मालकिन द ग्रेट शमशाद बेगम जी. बचपन के दिन भुला न देना, नौशाद अली के साज पर शाकिर बादायुनी का लिखा हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग.

0: बचपन के दिन भुला ना देना, ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय लता जी और शमशाद बेगम जी uit de superhit movie Didaar 1951, composed by maestro Nawshad Ali. तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं, कहीं जाना मत यारो, क्योंकि फिल्म दीदार का सभी नगमे सुपरहिट साबित हुए। आफ्टर द ब्रेक
1: अधिकारियों का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.

0: बेनिडिक्ट मैक्लारेन टैक्सेटर इंजीनियर क्रिस शिवगोविन गोविन घर खरीदने या बेचने के लिए पौकिंग इंजीनियर क्रिस शिवगोविन फॉर ऑल यू पौ टेकिंग स्टाल एंड पिटोन टेकिंग पौ फर्कनिंग पकरोटिंग पौ सुपरफिसी फरकाफलिंग प्लानन और पुदल फर्दीलिंग के लिए इंजीनियर क्रिस शिवगोविन जानकारी तथा फीस देते हैं पुदल फर्दीलिंग सिविल टेक्निक वर्कन ह्यूलक्स फॉरवर्ड हिपोटेक लेखाली साक्षीस oprichten van ondernemingen, schenkingen, testamenten, volmacht, ADG, Chintrapar. Leiding 11, nummer 8, telefoon 00597-881-1602. Our 06-48-79-25-20. E-mail chrissiugobind@yahoo.com. Architecten en ingenieursbureau Chris Siugobind.
1: Uitwart. Hindu dharma uitwart. Hindu dharma uitwart.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारी फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में, जहां पर भी जिस साल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि प्रकट हो। मैं ढील भी लेजर प्लेजर के साथ नतीलिक तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को भी एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। एंड वर्क्स लेडीज एंड नतीलिक द लेडी टैक्सी ड्राइवर्स आल्सो। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बैंस ऑफ द ईस्ट प्लांट्स। आप एक व्यापार हो या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर करते हो, शोस वगैरह और गमन हो और गुमन, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, कमर्शियल हो या जरूरी खबर हो, अब मात पर हम लोग बनाकर और उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, जितने बार आप हम लोगों को कहेंगे। और ये भी किफायत सस्ते दाम में मैं तो सदियों से ही आप सभी कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी बेलेटेडेंस कंतोर यूरोप फेर तक। तो जो भी रेडियो का काम हो, देखकर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हिंदुस्तानी रेडियो। तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करे तैडेंस कंतूर यूरोप फेर तक। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और फुल टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम के ओर। और बीते हुए अपने हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म दीदार तक, जो रिलीज किया गया था 1985 तक, महान संगीतकार नौशाद अली के सांच पर, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज में, महान लेखक शाकिल बादायूनी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान। और श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि महान अभिनेता द ग्रेट दिलीप कुमार जी ने इस फिल्म दीदार में नरगिस और राज कपूर जी के साथ काम किए हैं। तो मिलके सुनते हैं ये अति सुंदर बयान फ्रॉम द मूवी दीदार, तू कौन है मेरा।

Tu Kone Hei Mirai, de film die daar 1951. Het is een derbeane Let Him Engage Kritjeke met Durawaz mee, composed by Naushad Aligi. Leja Meri Duwai, Evergreen Song. एक बार फिर सुनाने वाली है आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी नौशाद अली के साज पर आई 1951. और इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब ने काम किए नरगिस जी के साथ और होना चाहिए अशोक कुमार जी के साथ भी. मिलके सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल.

ले जा मेरी दुआएं। लता जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, एक फिल्म दीदार। और देखा जाए दोस्तों तो उसी फिल्म में से एक और दो नगमे रह गया है सुनाने के, वो मैं तुरंत सुनाने वाला हूँ आप सभी को। अगला बयान एक सुपरहिट सॉन्ग है पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में, साथ दे रही है क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी। शाकिल बड़ा यूनिक का लिखा हुआ सुपरहिट सॉन्ग कंपोज्ड बाय मैस्ट्रो नौशाद अली। देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा।

देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा देख लिया। ब्यूटिफुल वंडरफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दीदार नौशादली की सांस पर आपने सुना दो महान गाने वाले हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द किंग ऑफ मेलोडी एंड द क्वीन ऑफ मेलोडी रवि साहब और लता जी नौशादली की सांस पर। तो मैं भी श्रोताओं फ्रॉम द मूवी दीदार एक आखिरी बयान आप सुनेंगे और इस बार लता जी सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को कि दुनिया ने तेरी दुनिया।

Ati Sunder Bayan ai di film Didar Queen of Melody la tamangesh kerji ke maduramas me music arranged and composed by Maestro Naushad Ali. तुम्हारे प्रिय श्रोताओं सभी गाने आप फिल्म दीदार जो रिलीज किया गया था 1985 में आप सभी सुन चुके। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो रिलीज किया गया था 1985 फिल्म संग दिल। और इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब जी ने काम किया है मलकाय हुस्न द ग्रेट अभिनेत्री द ग्रेट एक्ट्रेस श्री मधुबाला जी के साथ और संगीतकार सज्जित हुसैन के साज पर आप सुनेंगे उसी मूवी का ये फर्स्ट सॉन्ग और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी ये हवा ये रात ये चांदनी ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सभी प्रिय श्रोताओं के नाम

अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय सुनने वालों, फ्रॉम द सेम मूवी संग दिल, और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, कॉम्पोज बाय मास्टर सज्जत हुसैन, और साथ दे रहा है द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी, दिल में समा गए साजन।

0: दिल में समा गए सजन एक द फिल्म संदिल 1952 द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद और भारत रत्न लता मंगेशकर जी की आवाजों में तीसुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। कंपोज बाय सज्जत हुसैन और लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने। तो मैं प्रिय श्रोताओं, वक्त हो गया है ना कुछ शेयर्स हो जाए हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए, तो जरा गौर फरमाएं। अर्ज किया है यारों की गीत की जरूरत महफिल में होती है, गीत की जरूरत तो महफिल में होती है, प्यार की जरूरत दिल में होती है। बिन दोस्ती की अधूरी है ये जिंदगी, बिन दोस्ती के अधूरी है ये जिंदगी, क्योंकि दोस्त की जरूरत हर पल महसूस होती है। क्या बात है, वाह। इश्क और दोस्ती मेरी जिंदगी का गुमान है, इश्क और दोस्ती मेरी जिंदगी का गुमान है, इश्क मेरी रूह है तो दोस्ती मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूं फिदा सारी जिंदगी, इश्क पे कर दूं फिदा सारी जिंदगी, मगर दोस्ती पे मेरा इश्क कुर्बान है। क्या बात है, वाह। तुमसे दूरी का एहसास जब सताने लगा, तुमसे दूरी का एहसास जब सताने लगा, तेरे साथ गुजरा हर लम्हा याद आने लगा। जब भी तुम्हें भूलने की कोशिश की, जब भी तुम्हें भूलने की कोशिश की, ऐ दोस्त तू दिल के और पास आने लगा। क्या बात है, वाह। मिलाना यानी मिलना बिछुड़ना सब किस्मतों का खेल है, मिलना बिछुड़ना सब किस्मतों का खेल है यारो, कहीं नफरत तो कहीं दिलों का मेल है। बिक जाए है हर रिश्ते इस दुनिया में, बिक जाए है हर रिश्ते इस दुनिया में, सिर्फ दोस्त ही दोस्त को काम काम आता है। बड़े अजीब है ये जिंदगी के रास्ते, बड़े अजीब है ये जिंदगी के रास्ते, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग दोस्त बन जाते हैं। मिलने की खुशी दे या ना दे, मिलने की खुशी दे या ना दे, बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। ये था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स की चाहने वालों के लिए। आगे मैं कुछ और कोशिश करूंगा सुनाने के लिए। अगला बयान एक अति सुंदर सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी संदिल। वो तो चले गए ऐ दिल, लता जी के मधुर आवाज में सज्जत हुसैन के साँच पर राजेंद्र कृष्ण का कलम से लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान, थोड़ा डायलॉग के साथ।
1: कब लौटोगे?
2: क्या
1: हमसे और इंतजार नहीं होगा?
2: कौन किसका इंतजार करता है ये तो भगवान ही जानता है।

वो तो चले गए ऐ दिल, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी, ऐ द फिल्म संदिल 1952 सज्जद हुसैन के साथ पर। अगला बयान एक अति सुंदर पुराना नगमा है फ्रॉम द मूवी संदिल, और एक बार फिर लाख करोड़ का दिल यानी द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी के मधुर आवाज में, कहाँ हो कहाँ मेरे जीवन सहारे।

हाँ मेरे जीवन सहारे, द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी के ब्यूटीफुल आवाज में एड फिल्म संदीर सज्जद हुसैन के साज पर दर्शन प्यासी ऐ दासी फ्रॉम द मूवी संदिल। और इस बार मशहूर गाने वाली पुराने जमाने के द ग्रेट गीता दत्त जी के मधुर आवाज में सज्जद हुसैन के साज पर

दर्शन प्यासी आई दासी। पुराने जमाने के मशहूर गाने वाली द ग्रेट गीता दत्त जी के मधुर आवाज में सैयद हुसैन के साज पर फ्रॉम द मूवी संदिल। तो फ्रॉम द मूवी संदिल एक आखिरी बयान आप सुनेंगे हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, और इस बार आशा भोसले जी और गीता दत्त जी के आवाज में सज्जत हुसैन के साज पर मिल के सुनते हैं धरती से दूर गोरे बादलों।

guri badalumi. At yung sundar bayan aur sunadi aap sabhi ko us zamane ke mashhoor gaane wali the great Geeta Dutt ji saath de rahi thi Asha Bhosle ji Sajjad Hussain ke saanch par from the movie Sandil aakhri bayan us film ka. तुम्हारे भी प्रिय श्रोताओं अभी आप विज्ञापन सुनेंगे देश विदेश का समाचार उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना यारो आप भी जाइए कुछ गरम गर्मा गर्म कुछ इस्तेमाल कीजिए ठंडा का मौसम है और ब्रेक के बाद मैं मिलता हूँ आपसे कहीं जाना मत

भक्त जनों के लिए भक्ति ही धन है, योगियों के लिए योग ही धन है, पंडितों के लिए विद्या धन है, और स्त्रियों के लिए शील ही सच्चा धन है।

जिस मनुष्य में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं, वो मनुष्य इस मृत्यु लोक पर भार रूप होकर मनुष्य के रूप में

विद्या मनुष्य का सही स्वरूप है, वो अदृश्य गुप्त धन है। विद्या सुखदायी है, यशदायी है। विद्या गुरुओं के भी गुरु है। विदेश में विद्या बंधुजन समान है। विद्या परम दिव्य तत्व है। राजाओं में धन का नहीं बल्कि विद्या का आदर होता है। अतः विद्या विहीन मनुष्य पशु समान है।

स्वर अर्थात कूक कोकिला की शोभा है। सतित्व अर्थात पातीय वरत्य नारी की शोभा है। कुरूप जनों के लिए विद्या ही शोभा है और तपस्वियों के लिए क्षमा ही शोभा है।

काम, क्रोध, लोभ और मोह ये तन में प्रवेश तस्कर हैं। ये हमारे ज्ञान रूपी रत्नों का हरण करते हैं। अतः इनसे जागृत रहिए।

जगत में आयुष्य, धन, यौवन, पुत्र और स्त्री सभी अस्थिर है, केवल धर्म ही स्थिर।

चंद्रमा ताप का हरण करता है, कल्पतरु दरिद्रता का नाश करती है, किंतु साधु समागम पाप ताप और दरिद्रता तीनों का हरण करता है।

जिनकी लक्ष्मी दान के लिए है, विद्या सत्कार्यों के लिए है, जिनका चिंतन परम तत्व के अनुभव के लिए है और वाणी अन्य के उपकार के लिए है, वैसे मनुष्य त्रिलोक के तिलक स्वरूप है और सदा वंदनीय है।

मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु प्रमाद है, यानी भ्रम है, जो उसके भीतर सन्निहित है। पुरुषार्थ के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है।

धैर्य जिसका पिता है, क्षमा माता है, स्थिर शांति जिसके नित्य गृहिणी है, सत्य जिसका पुत्र है, दया भागनी है, मन का संयम बंधु है, जिसकी सैया भूमि तल है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, और ज्ञान रूप अमृत ही जिसका भोजन है, इस तरह का जिसका परिवार है, ऐसे योगी जनों को किसी का भी डर नहीं होता।

हे जगन माता, मैंने कभी तेरे चरणों की सेवा नहीं की, कभी दान नहीं दिया, मेरे मन में कभी भी प्रभु प्रीत नहीं जागी, फिर भी हे अम्बा मैया, तुम मुझ पर अपना स्नेह बरसाती हो। सच है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती।

हे जगत जननी, मैं ना मंत्र जानता हूं ना तंत्र जानता हूं, आह्वान ध्यान और स्तुति कथा से भी मैं अज्ञान हूं। तेरा स्वरूप, तेरी मुद्रा और विविध पाठों को भी मैं नहीं जानता। केवल मैं इतना जानता हूं कि तेरा शरण क्लेश हरण है।

मित्रों, जब सूर्य देव पृथ्वी पर अपनी महिमा फैला रहा है, तब पृथ्वी पर लगभग सभी जीव मौज मस्ती करते हैं और मनोरंजन की तलाश में रहते हैं और दूसरों से ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, एक दूसरे की तलाश करते हैं। लेकिन प्यारे प्यारे भाई बहनों, तो फिर मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि अकेले तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन साथ मिलकर हम जश्न मना सकते हैं। मैं अकेले मुस्कुरा सकता हूँ, लेकिन साथ मिलकर हम हंस सकते हैं। प्रिय साथियों, यही मानवीय रिश्तों की खूबसूरती है। क्या ये ज्यादा अच्छा और आरामदायक नहीं होगा अगर हम सब मिलकर इस महामारी की शुरुआत करें? तो कृपया पहले अपने आप से शुरुआत करें।

प्रिय मित्रों, आप अपने नए दिन के साथ क्या करने जा रहे हैं? बेशक जाने या अनजाने में बहुत से उपयोगी और अनुपयोगी चीजें, लेकिन सचेत रूप से अच्छे कर्म करें जो इसे सूरज की उगने की तरह हर्षित और खुशहाल बना देंगे। मित्रों, सुबह की ओस घास पर गिरती है और पक्षी फिर से चहचहाने लगते हैं और उनके लिए एक नया दिन शुरू हो जाता है, और हम इंसान इन सब का पूरा आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर दूसरे भी हमारा आनंद ले सकें? लेकिन हम सचेत रूप से अपने मंच पर बहुत सी खूबसूरत चीजें क्यों नहीं आने देते जो दूसरों को सुखी करती है? इसलिए प्रिय लोगों, कृपया अब से सचेत होकर कार्य करें, लेकिन अच्छी चीजें और अच्छे कर्म करें।

साथियों, संतुष्टि निश्चित रूप से एक खुशी देती है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिल सकती है, बल्कि केवल अपने आप में होती है। और यदि आप इसे महसूस करते हैं मित्रों, तो आप दुखी और उदास क्यों महसूस करते हैं और आप ये खुशी और संतुष्टि, ये पेड़ है। क्या आपने पिछले जीवन में अपनी योजना बनाई थी? ये कर्म है जो योजना बनाए थे पिछले जन्मों में, ये कर्म है। इसीलिए इस पर विश्वास करें और इसके साथ जीने का प्रयास करें और अपने शेष यानि बाकी जीवन को कुछ सुंदर बनाएं।

भाई बहनों, यदि हम एक सरल विचार याद रखें तो जीवन अधिक खुशहाल और तनाव मुक्त हो सकता है। हमें वो सब नहीं मिल सकता जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें वो सब मिलेंगे जो हमने कमाए हैं। उस पर हम क्यों ना विश्वास करें और बिल्कुल नए और अनुचित तरीके से दूसरों से लेने की राह पर हैं, जहां दूसरों को दुख और पीड़ा महसूस होती है। मित्रों, दूसरों को पीड़ा मत दें। यह याद रखें कि जो आपने बोया है, फिर फसल भी तुम्हें ही काटनी पड़ेगी, और ये बात सब पर लागू होती है, आप पर, मुझ पर, सब पर।

भक्त जनों के लिए भक्ति ही धन है, योगियों के लिए योग ही धन है, पंडितों के लिए विद्या धन है, और स्त्रियों के लिए शील ही सच्चा धन है।

जिस मनुष्य में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं, वो मनुष्य इस मृत्यु लोक पर भार रूप होकर मनुष्य के रूप में पशु

विद्या मनुष्य का सही स्वरूप है, वो अदृश्य गुप्त धन है। विद्या सुखदायी है, यशदायी है। विद्या गुरुओं के भी गुरु है। विदेश में विद्या बंधु जन समान है। विद्या परम दिव्य तत्व है। राजाओं में धन का नहीं बल्कि विद्या का आदर होता है। अतः विद्यावहीन मनुष्य पशु समान है।

स्वर अर्थात कूक कोकिला की शोभा है। सतित्व अर्थात पातीय वरत्य नारी की शोभा है। कुरूप जनों के लिए विद्या ही शोभा है और तपस्वियों के लिए क्षमा ही शोभा है।

काम, क्रोध, लोभ और मोह ये तन में प्रवेश तस्कर हैं। ये हमारे ज्ञान रूपी रत्नों का हरण करते हैं, अतः इनसे जागृत रहिए।

जगत में आयुष्य, धन, यौवन, पुत्र और स्त्री सभी अस्थिर है, केवल धर्म ही स्थिर।

चंद्रमा ताप का हरण करता है, कल्पतरु दरिद्रता का नाश करती है, किंतु साधु समागम पाप ताप और दरिद्रता तीनों का हरण करता है।

जिनकी लक्ष्मी दान के लिए है, विद्या सत्कार्यों के लिए है, जिनका चिंतन परम तत्व के अनुभव के लिए है और वाणी अन्न के उपकार के लिए है, वैसे मनुष्य त्रिलोक के तिलक स्वरूप हैं और सदा वंदनीय है।

मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु प्रमाद है, यानी भ्रम है, जो उसके भीतर सन्निहित है। पुरुषार्थ के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है।

धैर्य जिसका पिता है, क्षमा माता है, स्थिर शांति जिसके नित्य गृहिणी है, सत्य जिसका पुत्र है, दया भागनी है, मन का संयम बंधु है, जिसकी सैया भूमि तल है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, और ज्ञान रूप अमृत ही जिसका भोजन है, इस तरह का जिसका परिवार है, ऐसे योगी जनों को किसी का भी डर नहीं होता।

हे जगन माता, मैंने कभी तेरे चरणों की सेवा नहीं की, कभी दान नहीं दिया, मेरे मन में कभी भी प्रभु प्रीत नहीं जागी, फिर भी हे अम्बा मैया, तुम मुझ पर अपना स्नेह बरसाती हो। सच है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती।

हे जगत जननी, मैं ना मंत्र जानता हूं ना तंत्र जानता हूं, आह्वान ध्यान और स्तुति कथा से भी मैं अज्ञान हूं। तेरा स्वरूप, तेरी मुद्रा और विविध पाठों को भी मैं नहीं जानता। केवल मैं इतना जानता हूं कि तेरा शरण क्लेश हरण है।

अति सुंदर अति सुंदर, हमको यहाँ से श्रवण कर ली है और कहते हैं कि सुबह की रोशनी में छुपी है नई आस, सुबह की रोशनी में छुपी है नई आस, हार घिर कर भी कभी ना होना उदास, जिंदगी एक जिंदगी के हर एक मोड़ पे है एक नई बात। ये तो बात सच है कि जिंदगी के हर मोड़ पर है एक नई बात, उस पर जरूर से गौर करें और चलते हैं

जाती है, अवश्य सुबह की ठंडी हवा कुछ कह जाती है। हर पत्ता खामोशी से मुस्कुराता है। खुदरत के हर रंग में छुपी है बात कोई, जो सिर्फ खामोशी में ही समझाई जाती है। अवश्य जो सिर्फ खामोशी में ही समझाई जाती है।

किशोरदा जी के आवास में फिल्म का नाम है छोटी बहू और ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है नई खंतीन एनन से फंतख में। ओस की बूंदे फूलों को भिगा रही है, ओस के बूंदे फूलों को भिगा रही है, ठंडे लहरें एक ताजगी जगा रही है। एक प्यारी सी सुबह आपको जगा रही है, सुबह की प्यारी रौनक तो देखो।

नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सांवरिया। इसी धुन पर यहाँ हमने सुने कि रामा रामा रतते रतते बीती रे उमरिया। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, और आपके याद के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। आप सभी को एक शुभ प्रभात। कहती हूँ कि फूलों की तरह महकते रहो, फूलों की तरह महकते रहो और सूरज की तरह चमकते रहो। आपके लिए पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ये सुंदर सा प्यार भरा भजन और गीत आपके लिए।

फाइव इन एन यानी कि पांच मंत्र एक साथ यहाँ से हमने श्रवण की है और वो मंत्र हमने सुने हैं जिसमें हम श्रवण की है गणेश जी के लक्ष्मण लक्ष्मी जी के हनुमान जी की गायत्री मंत्र और शिव जी की मंत्र साथ में हम तीनों पांचों मंत्र एक साथ में श्रवण कर ली है। सुबह सुबह सुबह सुबह सूरज का साथ हो सुबह सुबह सूरज का साथ हो गुनगुनाते पक्षियों की आवाज हो हाथ में कॉफी और यादों में कोई खास हो उस सुबह की पहली याद आप हो। सुबह सुबह सूरज की साथ हो कितने आनंद मिलते हैं ना।

मन ही मंदिर और मन ही पूजा है। आपने सुने, हमने भी सुने और इससे हम जरूर से कुछ फायदा उठाएंगे।

जो सोता है वो खोता है और कहते हैं जो जागता है वही पाता है। सुबह सुबह जिंदगी की शुरुआत होती है, किसी अपने के साथ हो तो बहुत खास होती है। बादलों से सूरज निकल आई है, आसमान से नया रंग, आसमान पे नया रंग छाया है। बांसुरी बनाई के सांवरिया

बांसुरी बनाए के, जरूर से बांसुरी बनाए के। लता जी के आवाज में हमने श्रवण कर ली है।

0: The Storm Eagle of Jenny!
1: उज़्बेकिस्तान से ये सुंदर सा गीत आपके लिए यहाँ से चला दिया गया है। ये पल आपको बहुत सारे खुशियाँ लाए, यहाँ पे भी हो, जिस वक्त पे भी जहाँ आप रहे, वहाँ के माहौल जरूर से, वहाँ के महफिल, वहाँ इर्द गिर्द जो है, जब जिस समय बस मुस्कुराते हंसी खुशी में बीते। यहाँ से कुछ दो लाइन आपके सुनाना चाहती हूँ। लाइन के बोल ऐसा शुरुआत है, घटिया लोग घटिया लोग। उसके एक उदाहरण है, उदाहरण की जगह से हम आपको सुनाएंगे कि घटिया लोग कैसे होता है। उदाहरण के रूप में ऐसा है कि प्याज को जितना भी प्यार से क्यों ना काटे, आंखों में आंसू ला ही देते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग भी हमारे जिंदगी में ऐसे ही होते हैं, जिन्हें हम कितने भी प्यार सम्मान और इज्जत दे दे, लेकिन वो आखिरकार अपनी घटिया हरकतों दिखा ही देते हैं। तो प्याज के उदाहरण से घटिया लोग के एक उदाहरण दिया गया है, तो आपसे हम यहाँ पे बांट ली है। जी हाँ, आपके लिए अल्ताफ राजा जी।
2: जाने प्यार के नाजुक रिश्तों की गहराई को, मेरी आंखों ने झेला है रातों की तन्हाई को। मेरे दिल की हालत क्या है मैं जानू या दिल जाने, मेरे अलावा कौन बताए जाके उस हरजाई को।

दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। अपनी ही रुसवाई होगी, कुछ ना कहना ही अच्छा है। कौन है अपना इस बस्ती में, किससे दिल का भेद बताएं। ओ हर जाई तेरे बारे में चुप रहना ही अच्छा है।

जीना इसी का नाम है मेरे दोस्त, जीना इसी का नाम है। तो चलो हम आपसे बता दें कि जीना किसका नाम है। जीना इसी का नाम है कि शरीर को चंगा रखो, शरीर को चंगा रखो और दिमाग को ठंडा रखो, जेब को, जी हाँ जेब को गर्म रखो। जेब को गर्म रखो और यानी कि ढेर से पैसा उसमें होना चाहिए। और आँखों को, आँखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो। जी हाँ जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो और क्रोध पर लगाम रखो। व्यवहार को साफ रखो और खास तौर पे होंठों पर मुस्कान रखो। अगर आपके होंठों पे मुस्कान जो आ गए ना, तो आपके आंखों में शर्म रहेगा, जुबान नरम रहेगा, दिल रहम रहेगा, क्रोध पर आप यूं ही यूं लगाम रख पाओगे और व्यवहार आपके तो साफ हो जाएगा।

शामिल कर दिया गया है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में पंकज उदास जी को। घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। आपने ठीक सुना, घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। दर्पण को कहते हैं आईना, स्पीकल। कहाँ पर आपको दर्पण नहीं लगाना चाहिए? पहला है मुख्य द्वार के सामने दर्पण ठीक नहीं है लगाने में। मुख्य द्वार यानी कि होफ एनखां, बैत के सामने यानी कि स्लाब कामर में आपके बिस्तर जहाँ है उसके सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। बैत के सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा में दर्पण लगाना ठीक भी नहीं माना जाता है। दक्षिण यानी कि सौदन। दर्पण को अंधेरे में रखना ठीक भी नहीं माना जाता है। और कमरे में बहुत सारे दर्पण होना भी ठीक नहीं माना जाता है। सीढ़ियाँ के सामने दर्पण लगाना भी ठीक माना नहीं जाता है। सीढ़ियों के सामने दर्पण होना ठीक नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण का इस्तेमाल करना ठीक भी नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण। रसोई में दर्पण लगाना ठीक नहीं है। और दर्पण का मुंह नीचे की ओर रखना भी ठीक नहीं है। यानी कि मुंह नीचे यानी कि स्कॉइंस। और दर्पण को गंदा या धूल भरा रखना भी ठीक नहीं है। हेडब्रैंक अलेमा नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट और नेगेटिव एनर्जी। ये सब बात आपको बता दिया गया है वास्तुशास्त्र के अनुसार।

पंकज उदास के आवाज़ में कि आइए ये मौसम आपके लिए। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपनों भी रूठे, फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ।

जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है ना, जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है तब सामने वाले चाहे आंसू बहाए या कसमें खाए, असर नहीं होता। नो, जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता है, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। आज में जी लो, आने वाला कल का पता नहीं, पर भरोसा में है हम जीते हैं। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नाराजगी में, नफरत में या किसी से ईर्ष्या झगड़ा करने में बर्बाद मत करना।

पंकज उदास, पंकज उदास के आवाज में सुंदर सा गजल पेश किया गया। क्या क्या दोपहर में सोना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मेदाखदुच, इज दैट वेल खुद इज द फ्राग। क्या दोपहर में सोना चाहिए, जरूर सोना चाहिए, जरूर से सोना चाहिए। तो आपको यहाँ हम बता देते हैं क्योंकि क्या फायदा है अगर आप दोपहर में थोड़ा से सो जाए। दोपहर में 15 या 20 मिनट तक आप जो सो जाए तो उसका फायदा क्या होता है, हम आपको यहाँ से बता देते हैं आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। द एनख एख्त आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर आप दोपहर में 15 से 20 मिनट तक सोते हो तो ये शरीर के लिए फायदेमंद होता है। दिस हेल्पफुल फॉर यू लिखम, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है, दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है। ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड रोग का खतरा भी कम होता है और दिल स्वस्थ रहता है, तनाव कम होता है। Door 15 tot 30 minuten te liggen op een middag heeft zijn voordelen. Moet je 's middags slapen? Een paar voordelen wat het slapen 's middags doet. Als je 's middags 15 tot 30 minuten slaapt, is het goed voor het lichaam. Onze hersenen werken beter. Middagslaap verbetert het geheugen. Ook het risico op een hoge bloeddruk neemt af en het hart blijft gezond en stress vermindert. Dus het heeft zijn voordelen. Als u in het gelegenheid bent, gewoon doen. Even 15 minuten, 10, 15 minuten hoog uit 30 minuten. Als u uitrust, bent u opgeladen. In sommige landen heb ik gehoord en ook gelezen dat ze tijdens het werk gewoon moeten stoppen om 15 tot 30 minuten om gewoon uit te rusten. Ze zijn gewoon verplicht om dat te doen, om het te kunnen opladen om verder te kunnen. और वैसे हम सूरीनामों में भी मेदाह दुच लेते

दिल के पास बस आप ही रहते हो। आकाशवाणी के प्यारे प्यारे सुनने वालों, जान पहचान वालों, दोस्तों, भाई बहनों, कहती हूँ कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। रिश्ते को वक्त देना सीखो, रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा। मैं हूँ आपकी सेविका शांता, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम सलाम सत श्री अकाल राधे राधे नमस्कार हो जी। आप सब कैसे हो?

तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं और तुम्हारे पास हूँ सदा। सुनाए हमको ये दो मशहूर गाने वाले लता और मुकेश जी, बढ़ चलते सुनने के लिए।

अति सुंदर सदाबहार गीत आप सुन रहे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। कुछ खूबसूरत लम्हे जो दिल में कैद हो जाया करते हैं, कसम से उन्हें याद करके हम मन ही मन कितना मुस्कुराया करते हैं। दुख की कैसी भी छाया हो जीवन में, वो लम्हे जीने की वजह बन जाया करता है। कहने को तो सुख दुख आते जाते रहते हैं। दिल में जो रहे वो अमानत बन जाया करता है।

किशोरदास से हम सुनते हैं कि जिंदगी हंसने गाने के लिए पल दो पल, और ये फिल्म जंजीर से निकाला गया है।

इस बार हम सुनेंगे आशा भोसले जी के साथ दे रहे हैं किशोरदा जी ने। तो है वही दिल ने जिसे अपना कहा, फिल्म का नाम ये वादा रहा।

ये वादा रहा, जैसे आपने सुने फिल्म का नाम है, ये टाइटल सॉन्ग ये वादा रहा, और उनको सुनाए है आशा भोसले जी और किशोर दा मिलकर। किसी ने बहुत खूब से कहा है कि वच साइड साली ओसन एंड दैट इज अक्सी रियाक्सी कोटम वी खुद दूत खुद ओंतमूत। जो नहीं है उसका अफसोस करते हैं, जो नहीं है उसका अफसोस करते हैं, जो है उसे ज़्यादा पाने के लिए रोते हैं, जो मिल जाता है उसे पाकर कभी ना संतुष्ट होता है। इंसान के फितरत ही कुछ ऐसा है जो कभी ना पूरी होते हैं।

जी हाँ, प्यार प्यार प्यार प्यार महेंद्र कपूर जी, आशा भोसले जी की आवाज़ में हमने सुने। फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर। जी हाँ, और सुनने वालों आपसे ये जरूर कहूँगी कि कुछ तो चाहत रही होगी इस बूंदों की, इस बारिश के बूंदों को भी। कुछ तो चाहत रही होगी इस बारिश की बूंदों को भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद

जिंदगी जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है, तो कोई थोड़े में ही खुश रहते हैं।

चांद खिला फिल्म सागर से निकाला गया ऋषि कपूर और डिंपल कबाडिया इसमें जो काम की है, और किशोर दास जी की आवाज़ में हमने सुने फिल्म सागर से जो निखिल फैवन तख्त में पिक्चराइज किया गया है। चलो चलो जिंदगी के सफ़र को एक नया मोड़ देते हैं, चलो जिंदगी के सफ़र को एक नया मोड़ देते हैं, जो हमें ना समझे, जो हमें ना समझे हम भी उन्हें समझाना छोड़ देते हैं।

हिमेश रेशम मिया की आवाज़ में श्रवण की है और कहते हैं, और क्या कहते हैं, रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे, कि रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे, नज़रों से नहीं दिल से बस बात करे, हर पल में प्यार है। जी हाँ, हर पल में प्यार है मेरे दोस्तों, हर लम्हे में खुशी है, हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, कह दो तो यादें हैं, कह दो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी है मेरे दोस्त।

ऐसा ही पहचान बन गया है रेगी स्टाइल में। आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है आफ्रिका फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जब हम अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और आप मैं भी अपने सपने अपने लक्ष्य के पाछे जरूर से दौड़ रहे हैं। हम जरूर से कामयाब होंगे कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लो मेरे दोस्त। हाँ, कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लो, यही आदत तुम्हें हर दिन खुश रखेगा। गिर कर भी जो उठ जाए वही सिकंदर।

0: रेगी स्टाइल में आप सुने गरीब हूँ, उसके बाद सुनेंगे सुख खुश होना किसका।
1: फिर भी दिल से कहता हूँ,
0: फिर भी दिल से कहता है और क्या कहता है? चले हम यहाँ से श्रवण करें उससे बात। उससे पहले ये आपसे बता दे कि जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। हाँ, जिसमें जीने की चाहत बस होनी चाहिए। गम जो है ना, खुद ही खुशी में बदल जाएगी। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए बस। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है।

खुश होना सीखा है मैंने और शब्दों पे आप जो गौर करें मेरे दोस्तों, तो अलहिदा है और बहुत इसमें हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी वो खुशी हो मेरे दोस्त कि तुम मेरी वो खुशी हो जिसके बिना मुझे मेरी सारी खुशी अधूरी लगती है। तो आप सोचो आप कितना खुशनसीब हैं और मैं भी कितना खुशनसीब हूँ आप जैसा दोस्त है।

जिंदगी की हकीकत, जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है मेरे दोस्त कि जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले है दर्द में अकेले थे अकेले है और खुशी में जमाना है। लगे हाथ ये बता दे हु यू सेल्फ फॉरसेकर्ड कंसर्न, हु यू सेल्फ फॉरसेकर्ड कंसर्न एंड दैट इज आल्स नंबर 1, सेट योर सेल्फ अप नंबर 1 वंट यू बेंट बलांगरेक। सुक नीट नार गुडकेयरिंग ऑफ बेफेस्टिगिंग फन आंदरन, गेव योर सेल्फ आंदाग इन प्लास वन आंदाग द सुकन बाय आंदरन। Stop met jezelf te bewijzen. Wees niet bang om nieuwe dingen te proberen. Omarm verandering. Respecteer jezelf. Durf nee te zeggen. Vertel altijd de waarheid. Durf je kwetsbaar op te stellen. Denk positief. Loop weg als je slecht behandeld wordt. Zorg goed voor jezelf, mijn lieve mensen. Zorg goed voor jezelf. Ben trots op jezelf. Vier je successen. Jij bent genoeg, precies zoals je bent. Geloof in jezelf, elke dag opnieuw. En dit zijn een paar tools hoe je zelfverzekerd

0: मैं भी यही कहती हूँ कि हर दिन अपने आप को जीतो जीतो। चार दिन की है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा। कर भला होगा भला, कंठ में ये बांध ले। होठों पे हंसी हो तो जिंदगी हंसी लगती है, खुशी के लम्हों से हर कमी दूर लगती है। इस पल के लिए, ये घंटे के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ साथ देने के लिए। ग्यारह का वक्त है मेरे दोस्त, यहाँ से विज्ञापन लगा देती हूँ। विज्ञापन के बाद आपको एक सरप्राइज है, आप जरूर से उसे सुने।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9763362047। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële

मैं सोच रही थी क्यों इतना साइलेंट हो गए, ढूंढ रही थी मिल गया। 11:13 हो चला है, 11:13 हो चला है आज सुबह की कार्यक्रम जो यहाँ से आपके लिए प्रस्तुत हो रहा।

अवश्य दुआ है, प्रार्थना है। अने सरजू के लिए जो अपना जन्मदिन आज बहुत बड़े समारोह के साथ परिवार के साथ मिलकर और मना रहे हैं, यहाँ से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के पूरे कोलेखा जितना है स्टाफ पर्सोनल के तरफ से अपने कोलेखा अनिल सरजू के वास्ते बहुत प्यार के साथ ये कहती है कि तेरे चेहरे के मुस्कान बनी रहे भैया अनिल सरजू, तेरी मुस्कान की तेरे चेहरे की मुस्कान बनी रहे, हर दिन तेरी खुशियों से सजा रहे, जन्मदिन पर मिले तुम्हें इतनी दुआ कि जिंदगी तेरी हर लम्हा रोशन रहे। जन्मदिन के हार्दिक से शुभकामनाएं पेश हो रहा है हमारा कोलेखा अनिल सरजू के वास्ते।

0: Happy birthday.
1: Happy birthday to onze collega, onze collega Anil Sarjuke. Paste Peshora special. Anil Sarjuka collega Johe. Pardeep ji, Rajan ji, Rajesh, Rosita, Shyam, Ganga, Rabia, Yosef, Shanta, Romeo, Johnny, Bubbly, Birbal, Sanjay, Vijanti, Director Kumar Girao ji, Kolega Rahim Baks ji. Hum sab milke Anil Sarju ke janamdin par khush hokar बहुत सारी बधाइयां दे रहे हैं और कहता है कि तेरी दोस्ती मेरी ताकत बन जाती है, हर मुश्किल में हिम्मत दे जाती है। अनिल जी, जन्मदिन पर दुआ है तू खुश रहे, क्योंकि तेरी खुशी हम सबकी जिंदगी बन जाती है।

सभी दोस्तों की तरफ से, यहाँ के भी राबिया की तरफ से भी, आपका अर्धांगनी की तरफ से भी, कहती है कि तुम्हारे मुस्कान कभी कम ना हो, कि तुम्हारे मुस्कान कभी कम ना हो। हाँ, वही मुस्कान अपने चेहरे पे जो लाए, वही मुस्कान हमेशा कायम रखना, कि तुम्हारे मुस्कान कभी कम ना हो, हो चेहरे पर खुशी पर जिंदगी में गम ना हो, हर मोड़ पर सक्सेस मिले आपको। अनिल जी, जिंदगी में रेस्पेक्ट मिले तुझे, जो भी करे तू दिल से, उसमें परफेक्ट रिजल्ट मिले तुझे। जन्मदिन पर हार्दिक से शुभकामनाएं, हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको।

भाइयों बहनों परिवार जितने हैं साथियाँ जो हैं उनकी प्रतिमा उनकी जीवन साथी माँ बाप कोलेखा के यही दुआ प्रार्थना है कि आपके जन्मदिन पर हम देते हैं यही दुआ, खुशियाँ आपके दामन से कभी ना जाए, खुदा के रहमतों में कभी कमी ना आए, आपके होठों की ये मुस्कुराहट ना जाए। जन्मदिन की ढेर सारी खुशनसीबियाँ ईश्वर करे आपकी, मिस्टर अनिल जी ईश्वर करे कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए और आपके सारे सपने सारे अच्छे अच्छे सपने ना सारे अच्छे अच्छे सपने जो है वो पूरे हुए।

हाँ हाँ हैप्पी बर्थडे आपको है, बधाइयाँ पेश हो रहा है कि आप जहाँ भी रहे जैसे भी रहे आप जरूर से खुशहाल में रहे, आपके चेहरे के मुस्कान जो है वो कभी कम ना होए, हालत या परिस्थिति जो भी हो जैसे भी हो। ये दो लाइन मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ क्योंकि ये लाइन बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास पर हमारे सारे कोलेखा के तरफ से अपने कोलेखा अनिल सर जी के जिनका जन्मदिन आज माँ और मना रहा है। एडवांस में आकर और यहाँ पर हम सब को त्रक्तेर करेगा। बल्कि इस वक्त जहाँ पे है वो खुश है, और खुशी होना चाहिए, खुश होना चाहिए क्योंकि पूरे परिवार के साथ है, अपनी माँ के सेवा करते हैं। माँ का आशीर्वाद तो कोई भी नहीं टाल सकता है। हर मोड़ पर सक्सेस मिले तुझे, बहुत अच्छा लाइन है ये सब, कि हर मोड़ पर सक्सेस मिले तुझे, जिंदगी में रेस्पेक्ट मिले तुझे, जो भी करे तू दिल से, जो भी करे तू दिल से उसमें परफेक्ट रिजल्ट मिले तुझे। है ना बहुत सुंदर लाइन, इसलिए मैं दोहरा रही हूँ। जिनका जन्मदिन आप सुनते तो आपके लिए भी, पर ये खास तौर पर हमारा कोलेखा अनिल सरजू के वास्ते है।

हाँ हाँ ये स्पेशल स्पेशल है अनिल सरजू के वास्ते, जो अपना जन्मदिन आज बहुत प्यार बहुत खुश होकर मना रहे हैं। हंसी तेरी कभी कम ना हो ए दोस्त, कि हंसी तेरी कभी कम ना हो, जन्मदिन पर मिले तुझे खुशियाँ हजार। यही दुआ है, प्रार्थना है प्रभु परमात्मा से। और अनिल सरजू जी, हाँ हाँ अनिल सरजू जी अपना सारे कोलेखा के वास्ते ये मांग कर रहे हैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर।

कोलेखा अनिल जी जिनका जन्मदिन आज है बहुत प्यार के साथ बड़े समारोह के साथ मना रहा है और खुश होकर अपने सारे कोलेखा फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सारे कोलेखा के वास्ते पेश किया है। खुश होकर कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वाकई में हम ये आज से उम्मीद भी करते कि आप नहीं छोड़ेंगे। हमारा टीम जो है बहुत प्यारा टीम है, इससे हम मिलजुल कर और आगे बढ़ाएंगे। और हमारे सारे कोलेखा आपको ये कहते हैं, आपके सारे परिवार भी कहते हैं, आपके जीवन साथी भी ये कहते हैं कि तेरी दोस्ती में जो सुकून सा मिलता है ना अनिल जी, कि तेरी दोस्ती में जो सुकून सा मिलता है वो हर रिश्तों से अलग महसूस होता है, वो हर रिश्तों से अलग महसूस होता है। जन्मदिन पर, बर्थडे पर, सब और बस इतनी दुआ प्रार्थना है मेरी और सभी दोस्तों के कि तेरा हर कल आज से बेहतर हो। और एक स्पेशल गीत आपके लिए यहाँ से लगा रही हूँ, इसे आप सुने और ज़रूर से इसे पसंद करें। सभी गीतों के साथ ये भी आपके लिए स्पेशल।

अवश्य अवश्य ले लो दुआएं माँ बाप की। भगवान का दूसरा रूप माँ बाप है, उनका आशीर्वाद से भगवान से भी टाली ना जाता है। चांद से प्यारी रात हो तेरी। अनिल सरजू जी, जन्मदिन के आपके बहुत सारी बधाइयां हैं फावन हिंदुस्तानी रेडियो के पूरे टीम की तरफ से, सभी स्टाफ पर्सोनल की तरफ से, आपके जीवन साथी की तरफ से, आपके माता पिता दोस्तों भाई बहनों की तरफ से जन्मदिन पर हार्दिक से शुभकामनाएं। आप जरूर से इसे बड़े समारोह के साथ मनाइए। और आखिरी में ये कहूँगी कि चांद से प्यारी रात हो तुम्हारी, कि चांद से प्यारी रात हो तुम्हारी, सितारों से रोशन बात हो तुम्हारी। जी हाँ, सितारों से रोशन बातें, जो बातें आप करते हो ना, कि सितारों से रोशन बात हो तुम्हारी। दुआ प्रार्थना है मेरी ये ए दोस्त, मेरी कलेखा, हम सबकी कलेखा, कि जन्मदिन पर हर खुशी साथ हो तुम्हारी, तुम्हारा साथ हो हर खुशी। स्पेशल स्पेशल आपके लिए, अनिल सरजू के लिए, अनिल सरजू के जो जन्मदिन हैं उनके लिए स्पेशल फाउन हिंदुस्तानी के पूरे टीम के तरफ से अपने कलेखा अनिल सरजू के वास्ते पेश किया गया। देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है।

आप भी चाहते हो मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सुनते हो, आप भी फरमाइश पेश कराना चाहते हो तो ज़रूर से आप आइए, कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कॉन्टैक्ट का नंबर है 9 से 7 तक।

खास तौर पे जो मौत समाचार हो तो वो भी आप ला सकते हो। दो मिनट बाकी है 12 बजने में, यहाँ से मैं रुखसत हो रही हूँ। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ये आशा उम्मीद है कि आप जरूर से खुशहाल में होंगे। और मौसमी समाचार हम आपको क्या कहे, इससे जरूर से आप लुफ्त उठाइए और ख्याल करना, पानी जरूर से पीते रहना, सोना क्रीम जरूर लगाते रहना और नौबत पड़े तो टोपी भी लगा लेना।

Zwijgen, zwijgen, zwijgen.

साइड पर आप चुन है और यहाँ सारे में होता है क्या हो तेरे और दर भरे गिर भी रुकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम प्यार करे मुझसे प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से खुदा करे जिसे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से

जीवन जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराते ही रहिए।

क्या हुआ तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता किसी और है।

चलो तुम छोड़ दो मुझको, चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस जाता हूँ। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब किसी के लिए पराया हूँ। शायद शायद मेरे सखम सिल जाए, शायद मेरे सखम सिल जाए, तुमको नया साथी मिल जाए।

क्या हुआ तेरा वाला दर्द भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहन हिंसाइन पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है, जैसे खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 8 2 8 4 से 5 आपको तार करना है।

तारों का सफर के प्रोग्राम में आज कृष्णा कुमार कुन्नत यानी मशहूर गायक स्वर्गीय काका के बारे में बातचीत होगा। कृष्ण कुमार कुन्नत मिस्टर के पैदा हुआ दीरेंद्र तक ऑक्सीस्तक इंडिया का प्लेबैक सांगर न सिर्फ हिंदी लेकिन तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम मराठी बंगाल और गुजराती गाना पेश किया। इंडिया से पॉप रॉक म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक भी पेश किया। एक बेटा जिसका नाम कृष्णा और बेटी जिसका नाम है तमारा। मलेशिया से ओल्डर्स माता पिता मलेशिया से थे और दिल्ली में बड़ा हुआ न्यू दिल्ली में बड़ा हुआ। लगभग 3500 गाना के ने गाया। जॉस ऑफ इंडिया जब क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रहा था नीकटक में तो इंडिया का क्रिकेट टीम के लिए भी एक गीत पेश किया। बेटा कृष्णा ने गाया एक मस्ती गाना एक मस्ती एल्बम बनाया और बेटी तमारा ने पियानो पेश किया। किकी किशोर कुमार और एस डी बर्मन को गुरु के तरह जानता थे। किकी कहते थे कि एक गायक का चेहरा मत देखना उसके चेहरे पर मत आना उसके आवाज़ पर आना। सही बात है दोस्तों।

वैसे किकी म्यूजिक और प्लानिंग कभी नहीं किया, सिर्फ स्टीरी किया यानी फेरिस्ताइट दिल्ली का स्टीरी में, यानी फेरिस्ताइट में स्टीरी के बाद वो मार्केटिंग मैनेजर का काम किया होटल इंडस्ट्रीज में, नहीं फिर नहीं तक में मुंबई चला आया। उसी साल म्यूजिक टेप लुइस बांग को पेश किया और एक दो रोज के बाद यूटीफी ने उन्हें तार किया और एक जिंगल पेश किया अथफतैंसी के लिए। चार साल के अंदर में 30,500 जिंगल्स किकी ने बनाया। लेस लिवर्स को अपन मेंटर की तरह जानते थे और आर बर्मन ने उन्हें बॉलीवुड में लाया। नीहरी नीहे नीहे तक में किकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में गीत तरफ तरफ पेश किया। और वैसे तो फिल्म मिथुन का एक फिल्म था जिसमें किकी ने भी एक गीत पेश किया, बीते लम्हे। हम सब मिलकर सुनेंगे किकी की आवाज़ में बीते लम्हे।

हंटिंग सेशन निघंटक में सोनी म्यूजिक इंडिया का शुरुआत किया गया और किकी को सेलेक्टेड किया गया इसी म्यूजिक इंडिया में। किकी ने बनाया सोलो एल्बम पल, जिसमें गाने थे जैसे आपकी दुआ, यारो और पल। किकी को स्क्रीन अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद 8 साल किकी ने गीत नहीं गाया, म्यूजिक वर्ल्ड में भाग नहीं लिया। 8 साल के बाद 2008 में एक एल्बम पेश किया, एल्बम हमसफर। वैसे तो किकी ने एंगल्स, रॉक, बालात वगैरह वगैरह अपन जिंदगी में गाया दोस्तों। वैसे किकी भी टीवी सीरीज के लिए बहुत से गीत पेश किया और स्टार परिवार में भी गीत पेश किया। उन्हें 2003 में अवार्ड मिला श्रिया घोषाल के साथ। किकी ने टीवी पे जैसे मैंने कहा बहुत से गीत गाए, वैसे पाकिस्तान का टीवी पे भी शो पेश किया और एक मशहूर गाना था पाकिस्तान टीवी पर, तन्हा चला। वैसे सबरी ब्रदर्स के साथ भी कव्वाली पेश किया, चलता सूरज। बहुत से इंडिया से बाहर बहुत से कॉन्सर्ट भी दिया। वैसे किकी 2015 में टीवी रियलिटी इंडियन आइडल्स में भी भाग लिया। 13 सितंबर 2015 में सोनी मिक्स बातों बातों में किकी ने तमिल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, कनाडा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, मलयालम फिल्म अवार्ड का उन्हें मिला, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2003, 2006, 2008 और 2009 में किकी को मिला, सी साइन अवार्ड 2007 में, आईफा अवार्ड 2004, 2006, 2007, 2008 और 2009 में किकी को मिला। दुख की बात यह है दोस्तों कि एक कॉन्सर्ट कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट देने के बाद वो वापस घर आते थे और वही कलकत्ता में एक सीढ़ी पर से गिर पड़ा और तुरंत 63 साल के उम्र में इन देर तक मई 2002 के बाद है जब किकी का मृत्यु हो गया। किकी दुनिया में नहीं लेकिन किकी के नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

का सफर यहाँ से समाप्त होता है। न्यूज चैनल पर आप चुन है प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है। प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

टिक टिक मेरा दिल बोले जीतू जितेंद्र का समय रहा उन दिनों में दोस्तों, फिल्म हम जोली का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। वैसे जितेंद्र का पिता इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोना चांदी आप जाने ने नकली सोना चांदी का गहने बनाते थे। तो जीतू ने एक बार स्टूडियो में गया है गहना देने को, तो फिल्म डायरेक्टर ने जीतू को देखा, उससे बातचीत किया और कहा क्यों ना आप मेरे फिल्म में काम करने के चले आए। तो जीतू ने सोचा घर पर जाकर और पिता के साथ वो फिल्म मैनेजर के साथ पास गया और तुरंत उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में एक रोल मिला। उसके बाद टॉप एक्टर था अपने समय पे, यार सैफन शेस्तक तो निगरी सीफन तक जबले खन्ना ने ही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। तो जितेंद्र एक टॉप एक्टर था। अब की बार राजेंद्र कुमार जो जुबली कैसे लोग कहते हैं जो जुबली अवार्ड विनर या जुबली कुमार के नाम से भी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। सहरा बानू के साथ फिल्म अमन में काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग राफी साहेब की आवाज़ में।

श्रद्धा जयपुरी का लिखा हुआ गीत शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप ट्यून है

डर भरा गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में तुम अगर मुस्कुराना चाहो, तुम अगर मुस्कुराना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगी, माइटी मुकेश की आवाज़ में।

किसी के प्यार में, किसी के प्यार में एक गहरी चोट खाई है, किसी के प्यार में एक गहरी चोट खाई है, वफा से पहले बेवफा पाई है। लोग तो दुआ मांगते हैं इस हाल में मरने की, मगर हमने उसी के यादों में जीने की कसम खाई है।

बड़े गीत बिल्कुल हर सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं राजन के साथ, वो भी फाहन हिंदुस्तान रेडियो के जरिए। अब की बार ना अपना था, ना अपना था जो कल गुजरा,

छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे, भुला के गम सारे, दिल से जियो। अपने के लिए नहीं सही, अपने के लिए नहीं सही, तो अपनों के लिए जियो।

चारों का सफर में आज थोड़ा सा बातचीत होगा। मजरू सुल्तान पूरी एक स्क्राइफर, एक लिखत है गीतों का, और था यार दोस्तों, और इन दिनों में दुनिया नहीं है, लेकिन मजरू सुल्तान पूरी असली नाम असरूर उल हसन खान, पैदा हुआ इन अक्टूबर 1939 में। और इनका पिता वो अंग्रेजी के समय पे मजरू सुल्तानपुरी का पिता एक सिपाही था और एक स्ट्रेंग मुस्लिम, वो सोचा था मजरू को एक दूसरा रास्ते पर ले जाने के, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी का ख्वाहिश था गीत लिखने को, गज़ल लिखने को वगैरह वगैरह। तो इंडिया का, भारत का जितना बॉलीवुड का जितना फिल्म म्यूजिक कांत है, जितना म्यूजिक डायरेक्टर है, लगभग सभी के साथ ये गीत पेश किया है दोस्तों। और मजरू सुल्तानपुरी को अब्दुल रशीद, एक फिल्म डायरेक्टर, देखा मुसादा बदली के साथ। मुसादा बदली एक शायर था और इसका शायरी जो था तो वो सुल्तानपुरी ने लिखते थे, मजरू ने लिखते थे हमेशा। तो इनका शायर जब सुना तो इसे कहा चलो फिल्म इंडस्ट्री में और वहाँ पर गीत लिखो, तो ये नहीं चाहते थे। फिर भी मुसादा बदली ने बातचीत किया और इन्हें ले गया नौशाद के पास। नौशाद बातचीत किया मजरू सुल्तानपुरी से और नौशाद ने कहा अच्छा मैं एक फिल्म से शुरुआत हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप एक गीत लिखे बादल आए झूम से इस तरह से। तो मजरू सुल्तानपुरी दो रोज के अंदर गीत लिख के और पेश किया नौशाद के साथ। नौशाद बहुत खुश हुआ, तभी से वो कदम रखा फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत से गीत लिखा दोस्तों। 50 साल वो फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और लगभग 300 गीतों उन्हें लिखा है। मजरू सुल्तानपुरी दोस्तों इस दुनिया में नहीं, लेकिन उस जिस तरह से वो गीत लिखा है, उर्दू भाषा वही लाया है बॉलीवुड या फिल्म इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री में। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है फिल्म यारों की बारात में एक गीत, चुरा लिया है तूने जो दिल को, हम सब मिलकर गीत को सुनेंगे।

मजरू सुल्तानपुरी। दोस्तों जब एक गीत पेश होता है तो जो गायक होता है राफ़ी हुआ या मुकेश हुआ या किशोर हुआ तो लोग कहते कितने अच्छी तरह से गीत पेश किया, वाह हुआ कहते, लेकिन जो जो कोई ये गीत लिखता है उसका बात उसका नाम लोग कभी नहीं लेता है। म्यूजिक जो होता है म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नायर भाई सोनी कुमार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वगैरह वगैरह उसका नाम भी लोग लेते हैं, लेकिन जो लोग ये गीत लिखते हैं उसका नाम कभी नहीं लोग लेते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। मजरू सुल्तान पूरी, मजरू सुल्तान पूरी को दो अवार्ड भी मिला। एक अवार्ड मिला फिल्म दोस्ती में चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे गीत पर, और साथ ही साथ नींद तक में दादा साहेब पल के अवार्ड मजरू सुल्तान पूरी को मिला। एक लड़की भीगी भागी से फिल्म चलती के नाम गाड़ी नहीं थी आख्तम फैफ तक में जब किशोर कुमार ने फिल्म को लिखा और तीनों भाई ये फिल्म में काम किया अशोक कुमार किशोर कुमार और अनु कुमार। इस फिल्म का गीत जितने थे सब किशोर कुमार ने गाया, लेकिन जितना गीत लिखा गया ये सभी ने मजरू सुल्तान पूरी ने लिखा। एक लड़की भीगी भागी से सुनेंगे।

मजरू सुल्तानपुरी, मजरू सुल्तानपुरी ने एक किताब लिखा और एक किताब से उन दिनों का प्रेमी जो था इंडिया का नेहरू जी, तो नेहरू जी ये किताब से खुश नहीं था और मजरू सुल्तानपुर से कहा आपको माफ़ी मांगा चाहिए। लेकिन मजरू ने काम नहीं किया, माफ़ी नहीं चाहा, माफ़ी नहीं मांगा तो उन्हें जेल पे भेज गया गया दोस्तों। और साथ ही साथ मजरू सुल्तानपुर एक कम्युनिस्ट था और जहाँ वो रहा था आसपास के आदमी उन्हें नहीं चाहते थे, इसलिए कि वो कम्युनिस्ट था और इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश था। तो जब ये जेल गया, जब खफांगस गया, जब लौट के आया, उन बीच में उनका जो घर पर नौकर था वो घर का जितना सामान रहा लेकर चला गया सभी सामान लेकर चला गया। और जब घर पर गया तो घर में कुछ नहीं था और आसपास के लोग जो थे उन्हें गुस्सा में ताकते थे। तो मजरू सुल्तानपुरी ने घर छोड़कर चला गया और गया एक स्टूडियो में, एक स्टूडियो जो रंजीत स्टूडियो था, तो वहाँ जाके बैठा था और सोचा था मैं क्या करूँ। उसी जगह पर नरगिस का माँ बैठा था, तो नरगिस का माँ उन्हें चीन लिया और कहा कि भाई सुल्तानपुरी आपके क्या हुआ, आपका क्यों इस तरह से दिखाते हो। तो उन्हें कहा कि मैं जेल से आया हूँ और लोग मुझे नहीं पसंद करता है वगैरह वगैरह। तो नरगिस के माँ उन्हें अपन घर पर ले गया और 8 महीना तक वो नरगिस के घर पर रहा, मजरू सुल्तानपुरी दोस्तों। और मजरू सुल्तानपुरी ने भी अवार्ड छोड़ के दोस्तों, जैसे मैंने कहा 50 साल के अंदर ये गीत लिखा, 50 साल गीत लिखा और लगभग 300 गीतों इन्हें तैयार किया। फिल्म धर्मक्रम में मुकेश के लिए ये गीत लिखा।

मजर सुल्तानपुरी जस्तो दुःख बात यह है कि मजर सुल्तानपुरी का मृत्यु हो गया 80 साल के उम्र में, और वो भी फिरंत उद्दिक में यार तुए दर्शन में सितारों का सफर यहाँ से मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। मैं वादा नहीं करता, सोचता हूँ आने वाला हफ्ता सितारों का सफर में एक दूसरा लिखत एक दूसरा शरीफ के बारे में बातचीत करने को।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इशहार करे किसी और से, खुदा करे जिसे इशहार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हुआ तेरा वादा, धड़ भरे गीत बुरकनहार सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला डर भरा गीत जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, मनोज माला सिन्हा दोनों का खिला हुआ फिल्म हिमालय के गोट का सॉन्ग है, माइटी मुकेश के आवाज़ में। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार

के साथ हमारे मुलाकात हुए, वक्त के साथ हमारे मुलाकात हुए, वक्त के साथ दिन और रात गुजारे। वक्त ने हमें साथ रखा, वक्त ने हमें साथ रखा, पर जब वक्त आए तो हम बिछड़ गए। क्या इसमें कसूर मेरा, आप या वक्त के।

क्या हुआ तेरा वादा दर्द भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में आपकी बार फिल्म तीसरी कसम का गीत है का सॉन्ग है सजनवा सजनवा बैरी हो गए हमार माइटी मुकेश की आवाज में।

प्यार का रिश्ता टूटे ना कभी, ये प्यार का रिश्ता टूटे ना कभी, ऐ मेरे दोस्त तुम मुझसे रूठे ना कभी। करते हैं रब से हर पल ये दुआ, करते हैं रब से हर पल ये दुआ, दूर रहकर अपने साथ ये छूटे ना कभी।

क्या हुआ तेरे द्वारा दर भर गीत का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहर हिंदुस्तानी पर आप चुन है प्रोग्राम गीतों का संगम आप सुन रहे हैं राजन के साथ।

श्रेया घोषाल के मीठी आवाज में जी भर के तुम देख लो, जी भर के तुम देख लो के बाद बारिशों का एक सॉन्ग है पद्मश्री उदित नारायण के आवाज में आप सुनेंगे।

0: थर।
1: अभी आप ये द्वेष सुना उदित नारायण और शरादा के साथ फाउन हिंदुस्तान रेडियो के रात्रि का या शाम के प्रोग्राम है दोस्तों। और प्रोग्राम में आपकी बार मैं दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बताना चाहते हूँ कि बॉलीवुड इंडिया का जो फिल्म इंडस्ट्री है दोस्तों, वहाँ पर जो फिल्म स्टार्स लोग हैं उन लोगों को हमेशा ऊंचाई पर लोग रखते हैं। जो एक फिल्म बनते हैं तो फिल्म स्टार एक्टर जो है उन्हें ज़्यादा पैसा मिले और एक्ट्रेस के कम मिलता है। और जब मंगा कार चलाए के मोटर कार चलाए के समय होते हैं तो फिर भी एक्ट्रेस लोग मंगा मोटर कार चलाते, एक्ट्रेस लोग उससे और सस्ते कार चलाते हैं। वैसे वैसे बहुत बात है कि वहाँ पर अभी नहीं बदला है, वो एक्टर्स का दुनिया है जो फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, वो अभी तलुक एक्टर्स फिल्म एक्टर्स एक्टर्स के दुनिया है। एक्ट्रेस के बहुत कम बातचीत, बहुत कम सुनवाई वहाँ पर होता है। तो मैं 5 एक्टर के बारे में बताऊंगा जिसका सबसे महंगा मोजरकार है। नंबर 5 पर है रणवीर सिंह, जिसके पास है एक एस्टन मार्टिन कार, उसका उसका दाम है लगभग 4 करोड़ रुपीस। नंबर 4 चौथा नंबर पर है सलमान खान। इसे तो सलमान खान को बहुत से महंगे महंगे मोटरकार है, लेकिन सबसे महंगा मोटरकार जो उसके पास है वो है एक लैंड रोवर, जिसका दाम है 4.5 करोड़ रुपए। नंबर 3 तीसरा जगह पर है अजय देवगन, उसके पास है एक रॉयस रॉयस जिसका दाम है 6.5 करोड़ रुपए। नंबर 2 पर है रिकित रोशन, जिसका पास भी एक रॉयस रॉयस है लेकिन उसका दाम है 6.3 रुपीस। नंबर 3 पर है दोस्तों बॉलीवुड का सबसे महंगा एक्टर जो है, या एक एक्टर जिसके पास सबसे ज़्यादा धन दौलत है, वो है शाहरुख खान, द रिचेस्ट मैन बॉलीवुड। और उसका पास है एक बुगाडी बेरोन, जिसका दाम है 12 करोड़ 12 करोड़ रुपए दोस्तों। और 1 करोड़ होता है लगभग 28 यूरो, तो आप जोड़ लीजिए कि उसका दाम कितना होगा, लगभग 1 मिलियन यूरो में जो जोड़ा जाए तो लगभग 1 मिलियन होता है। यह है बॉलीवुड का छोटा सा कहानी जहां पर सिर्फ मर्दों के बातचीत होता है, औरतों को बहुत कम सुनवाई है।

दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत, अरिजीत सिंह और साथी की आवाज में भी गीत सुन रहे दोस्तों। और अब की बार अमिताभ बच्चन और राखी, आप ये दोनों का बहुत से फिल्में देखे होंगे, लेकिन किशोरदा का सॉन्ग है दोस्तों नाइटिंगेल लता मंगेशकर के साथ, और गीत का बोल क्या है आप खुद सुनिए।

ये प्यार के सपने सच हुए दोस्तों। जब प्यार दिल लगा के कीजिए तो करेंगे। अगर आप प्यार दिल लगा के तो ये सपने जरूर सच हो गए। अगर दिल लगा के नहीं करेंगे तो सपने सच नहीं हो गए। बहुत से लोग प्यार दिल लगा के करते हैं लेकिन प्यार करते करते फिर मन भर जाता है और ये सच झूठ में बदल जाता है और ये घाव जो दिल पर छा जाता है वो जिंदगी भर रहता है दोस्तों। ये प्यार का बोझ जो है, प्यार का दुख जो है, जो दिल पर चल जाता है, आप जानते हैं आँख से शुरू होता है फिर जाकर दिल में समा जाता है। लेकिन जब ये दिल टूट जाता है तो फिर मैं ही एक बात कहूँगा, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम हो जाता है और उसको संभालना, उसको प्रॉब्लम को हल्का करना कोई नहीं होता है। हमेशा एक घाव के तरह छा जाता है। एक आखिरी सॉन्ग मैं पेश करूँगा इस सिलेक्शन में और वो है जरा तस्वीर।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशो द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशो। चलिए मिलकर सुनते हैं

हरीश सुखदेव जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिलबा का क्या लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलिया भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीन बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेसा शिवपॉल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: What's that smirk?
1: Where's what?
0: What's this here, so? Oh. Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had an emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेशा शिपोह की आवाज़ में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में केनेथ सालिक आपको सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

अभी आप सुन रहे थे रायन मनोरथ और जॉयस शिवप्रसाद जी की आवाज़ में मैं से मीना सेना साही सेना पै माने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। सुनने वालों कल जबकि एक गीत निकला है और वो है रायन मनोरथ जी का, तो उन्होंने ये गीत गाए है यानी एक मैशअप है आप सभी के वास्ते। और चलिए मिलके सुनते हैं। जी हाँ सुनने वालों चलिए मिलकर सुनते हैं। इट्स विनोद लक्ष्मण यानी विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। मैं प्यार का दीवाना।

अभी आप सुन रहे थे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे। ये सॉन्ग एक मैशअप जो है जो लाया गया है आप सभी के वास्ते रायन मनोरथ जी की आवाज़ में। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करते हैं सुनने वालों, और एक बहुत सुंदर सॉन्ग हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते वादिका राम सुकूल और धीरज लाला राम जी की आवाज़ में, मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरे सनम तेरा खत मिला, खत में तूने खत लिखने को लिखा। अभी आप सुन रहे थे धीरज लाला राम और वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में। सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र, चॉइस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं।

जॉय शिव प्रसाद जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र। एक मैशअप हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में आप सुनेंगे।

वादिका राम सुकुल जी के आवास में अभी आप ये मैशअप सुन रहे थे सुनने वालों। चलिए संदेश शिव दिन, सुजल उमराव नीलम माता दिन और सत्यम माता दिन

सुनने वालों, अभी आप सुन रहे थे संदेश शिव दिन, सुजल उमराव नीलम माता दिन और सत्यम माता दिन की आवाज़ में ये सॉन्ग हमने पेश किए हैं। एक और मैशअप हो जाए वादिका रामसुकुल जी।

आप सुन रहे थे वादिका जी की आवाज़ में ये मैशअप। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और प्रोग्राम में आ रहे हैं विशाल हीरा जी। भैया ताके लड़की तो क्या होता है, आप खुद सुन लीजिएगा।

विशाल हीरा जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे भैया ताके लड़की, तो लड़की शर्म आए। शिवम राजाराम आ रहे हैं प्रोग्राम में।

शिवम राजा राम जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों ये सुंदर सा मैशो। संदीप बदलू आ रहे हैं प्रोग्राम में और वो आपको क्या सुनाने वाले हैं। मुर्गी खोजे है टीता, चिकना खोजे है

वास सुरिनाम देश का महान गायक उस्तादों का उस्ताद और बैठन गाना का महान गुरु श्री राम प्रसाद राम खेलावन जी। अगला बयान सुनन को जा रही है आप सभी को एक और मशहूर गाने वाली हमारे सुरिनाम देश के मेयर बकंत अल्स द फ्रोइटी फ्रॉ फन द यार 1960-70, ook in Holland jarenlang gewoond en heel veel gezongen. Bohoti Mashur Ganewali, Amare Suriname, des West Indies, Trinidad, Tobago, Jamaica, Ostarin, Srimati, Manraji, Lechmanjike, Beautiful Awaz, Mee, Ati Sundar Bayan, Aisa Mausam, Ke Mausam To, Bohoti Gambhir Hai Yaro, Enjoy the Music, Sarnami Sangeet.

शाबाश शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाले सूरीनाम देश का बैठक गाने का उस्तादी श्रीमती मनराजी लक्ष्मण जी। अगला बयान एक और अति सुंदर बयान है हमारे सूरीनाम देश का बैठक गाना, वो भी त्रांगा बैठक गाना फ्रॉम सूरीनाम। ना टूटा दूध का दांत, क्या बात।

Shavaisha, Trangabaita Gana from Suriname, na Tuta Dut Kedat. अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी श्रोताओं को और एक शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को मैस्त्रो रामानंत राम गुण गाय के।

0: एकदम शाबाश शाबाश शाबाश। मशहूर गायक हमारे सुरिनाम देश का रामानंद जी के मधुर आवाज में ये अति सुंदर शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। अगला बयान एक जबरदस्त चटनी सॉन्ग है और गाने वाला है हमारे हॉलैंड देश का नौजवान कलाकार जो काफी नाम कमा चुका है हॉलैंड देश सुरिनाम देश अमेरिका त्रिनिदाद टोबैगो वन एंड ओनली प्रिंस चार्मिंग शिवम राजाराम। और वो क्या कहती है कि चलो पीसे मसाला मैशअप।
1: वी ऑल नो दैट मैजिकल पाउडर दैट स्पाइस ऑफ योर

Shava shava spise mashala mashab bai mashur gayak hamare hollandis ka shivam rajaram. अगला बयान आप सभी को सुनाने को जा रही है उभरती हुई कलाकारा तिफानी पूरन जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान सुरीनाम टूर चटनी बैठक द चाय टू मिक्स सॉन्ग.

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश से दोनों नैना मशहूर गाने वाला स्टीफन रघुनाथ के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आज श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया, खास करके फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। और ये अति सुंदर प्रोग्राम आज श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। अगला बयान एक और मशहूर गाने वाला हमारे देन हाग इपनबर्ग हॉलैंड देश से उस्तादों का उस्ताद माएस्ट्रो रुबेन पंचम सुनाते हैं छेड़ो ना छेड़ो।

शाबाश शाबाश उस्तादों का उस्ताद रूबेन पंचम जी के मधुर आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी प्रेम संगीत आप सुनेंगे चल बंबई रानी।

चल बम्बई रानी प्रेम संगीत के मधुर साज और संगीत पर ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं और ये भी आज का ये जो सरनामी संगीत पहला अध्याय बैठक गाना का आखिरी सॉन्ग होगा और वो सुनने को जा रहे हैं आप सभी को पंडित रायन कल्पू जी के मधुर आवाज में। ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे कि प्यार किया तो डरना क्या, सही बात है ना।

क्या भाई, शाबाश। महान गायक हमारे सूरीनाम देश का पंडित रायन कल्पू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना कि प्यार किया तो डरना क्या। अगला बयान सुनाने को जा रहे है, नहीं अभी आप तो कुछ और सुनेंगे। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये तक था हमारा पहला अध्याय सरनामी संगीत का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे

बढ़ाऊंगा तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जर

वाह क्या बात है, लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया फिल्म आदमी में से निकाल कर हमने चलाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि आप भी हैं, मैं हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं मैथ्यू मुकेश। जी हाँ, मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म मर्यादा, फिल्म मर्यादा के गीत हम, चलो हम आपको सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा

0: जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, फिल्म मर्यादा में से निकाले हैं। मेरे पास तो ये गीत सीडी पर था इसलिए नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर मैं गलती नहीं कह रहा हूँ कहूँगा तो ये फिल्म में राजकुमार जी ने काम किए हैं। और लोग हो गए लेकिन सिर्फ राजीव कुमार के नाम मुझे इस वक्त याद है। फिल्म मर्यादा में से हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है कि राजा रानी की कहानी है। देखते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत फिल्म उपहार में से, नेगन तीन एनन सही फंद।
1: मैं एक राजा

मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की निकाल कर निगति ए नसीब का ये गीत फिल्म उपहार में से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने चलाए। चलिए देखते हैं, हमने प्लेयर पर रखे हैं लेकिन कहाँ गया ये, तो फिर निकल गया। बहरहाल हाँ आ गया फिर। चलिए हम आपको सुना रहे हैं एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

वाह क्या बात है, आपने सुने एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं कि प्यार करने वालों का कभी हार नहीं होता है, इसलिए अगर प्यार करना है, हार नहीं है तो प्यार का इजहार कीजिए अवश्य। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, अभी तो देखते हैं, जी हाँ अभी थोड़ा समय अवश्य बाकी है। लीजिए इस तरह से आ रहा है, आपकी परछाइयां में से, मदन मोहन के साज पर।

लता जी, मदन मोहन के साज पर हम आपको सुनाए ये गीत। फिल्म आपकी परछाइयां में से निकाल कर निकली फिर सस्त का ये गीत, 1974 का ये गीत, ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए, आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत। इस तरह से है,

नहीं जाए रफी साहेब, वो लता ये फिल्म अनजाना में से निकाले हैं और ये गीत हमने पेश किए आप सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए, जहाँ पर आप भी होंगे आपका हृदय से स्वागत है। हमने प्लेयर में एक गीत और रखे हैं, जी हाँ, क्या ख्याल है। चलो ये मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म मिलाप में से निकाले हैं, 1972 नेगेटिव 20 का ये फिल्म है, और चलो सुनते हैं इस तरह से।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुनाए ब्रिजभूषण के साज पर हमने पेश की फिल्म मिलाप में से निकाल कर नेगंतिन तो इन सैफ इन 1972 का ये गीत। चलिए अगला नंबर हम आपको सुनाने वाले हैं क्या ख्याल उनके पहली नज़र क्या असर कर गई। चलो लता जी आपको बताएंगे क्योंकि हम तो बता ही नहीं सकते।

उनकी पहली नज़र क्या असर कर गई, लता जी आपको सुनाएं फिल्म अप्रैल फूल। फिल्म अप्रैल फूल में से निकाले हैं निगेटिव फिर से अस्तक का ये गीत, 1974 का ये गीत शंकर जयकिशन के साथ पर आओ चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं, क्या ख्याल है देखते हैं। वो दिन याद करो, जी हाँ आप भी वो दिन याद करो और मैं भी वो दिन याद कर रहा हूँ। और कौन सा दिन, कौन सी साल, 1971 का, जी हाँ, द मैन विद द गोल्डन वॉइस।

मोहब्बत की कहानियाँ लता जी और द मैन विद द गोल्डन वॉइस आपको सुनाए हैं। फिल्म वो दिन याद करो में से निकाले हैं निकती ए नसीब तक यह शानदार गीत हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम देख रहे हैं प्लेयर में हमने रखे हैं लता जी की, लता जी के गीत है। देखा जाए जहाँ तक मेरा यहाँ निकती फैफ का ये गीत है और चलिए हम आपको सुनाते हैं। फिल्म है हिमालय की गोद में से याद हिमालय हमने कहा था याद होगा हिमालय जो उस समय सूरीनाम की बात था। मैं कांप था तो एक हफ्सी आया बाहर से भीतर, उन्हें गंगा गंगा एक बात बतानी है। उन्हें बोलो भाई हमने एक फिल्म देखे हैं कि पोस्टर चपकाया हुआ है, हाँ ये पता नहीं कि दुलिक्स का था या इंडिया ओवरसीज का, क्योंकि इंडिया ओवरसीज का फिल्म में द पारल चलाता था और दुलिक्स का जसोदरा चलाता था, अब मुझे याद नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा फिल्म का नाम है हिमालय के खुतमैन। हमने सोचा यार सोचते सोचते कुछ देर बाद याद, क्योंकि गाना पहले आ जाता था सूरीनाम में ना, तो याद आया हाँ निकिती फैफ का ये फिल्म है हिमालय के गोद में। उन्होंने कहा खुतमैन तो बाद में समझा गया कि हाँ गोद में। लीजिए हिमालय के गोद में से निकाल रहे हैं, इस तरह से आ रहा है ये शानदार गीत।

सारे बगिया खिली, ये गीत पेश हुआ लता जी आपको सुनाए हैं फिल्म हिमालय के गोद में से निकाले हैं 1965 का ये गीत, निगदी फेफ सस्तक का ये गीत, जहाँ तक मेरा ख्याल है शंकर जय किशन है, लेकिन पता नहीं, बहरहाल अगर गलत हो तो मुझे आप बता देना, शंकर जय किशन के साथ पे जहाँ तक मेरा ख्याल है। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक गीत और पेश करने वाले हैं और वो ये है, हमने तो देखे ही नहीं लेकिन चलाते हैं, चलो हम भी सुनते हैं आप भी सुनो।

दिल ही जाने लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना 1972 का नेहन तीन त्वेन सेवन तक का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ़ की आवाज़ में निखते एन एस एस तक का ये गीत, क्या ख्याल है।

उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी राज।

अरे गा तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाए फिल्म अभिनेत्री में से निकाल। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और

जो तुम हंसोगी रोएगे दुनिया या हंसेगे दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति एन सैफ तक का ये गीत है, चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत, हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं, आप सुनोगे मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुना है तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

भीगा है, हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। और चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, फिल्म मन मंदिर। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन सही बंधक का ये गीत, 1971 का ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्म में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा, करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54, यानी 405 तक या 505 तक, बहरहाल रौंद 405 तक, 405 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दी है।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निगत ए नसीबे तक का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले हैं एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेन में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं, यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाजार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं। बहुत सारे सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त। जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया। फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं। जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो फिल्म दिखाने के सिलसिला था। अब यहाँ डूबने मरने की बात हो रहा है तो चलो सुनते एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी ये डूबने मरने के क्या सिलसिला है।

हाँ, तो आपने सुने चल दरिया में डूब जाएं के सिलसिला हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चुने मैं चला रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर प्रेम कहानी में से निकाल कर निकली फैफ सैफ दुख का ये गीत। चलिए आपको सुनाते ये सेमी क्लासिकल इस तरह से। रफी साहेब सुमन कल्याणपुर।

हाय रे सावन बीता जाए, ये शानदार गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाएं ओ फरफाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस श्री

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, ये गीत मैथ मुकेश के बाद एक बार फिर मैथ मुकेश है इस तरह से। फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल रहे हैं ये गीत।

हमारा फसाना मिट नहीं सकेगा ज़माना। और अभिजीत जी और अलका जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत जो हमने पेश की और फरफान हिंदुस्तानी रेडियो, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। जी हाँ, और प्रोग्राम में हमने रखे हैं देखूं तो बाबू सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल। चलो सुनते हैं। हाँ,

वाह क्या गीत है, हम आपको सुनाएं शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। जैसे मैंने कहा, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो। फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम का। जी हाँ, अगर आपने प्रेम की है तो ढाई अक्षर प्रेम का आपको अवश्य मालूम होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है, ये फिल्म तो आपने अवश्य देखे, फिल्म डर। फिल्म डर तो आप देखे होंगे। लता जी और उदित नारायण मिल के आपको ये गीत सुनाते हैं शिव हरि के साज पर। तो आप शायद सोचोगे कि शिव हरि कौन है। शिव हरि वही जो संतूर वादक है, मशहूर संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, और हरि है हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाता है। इसलिए नाम लंबा था तो छोटा कर दिए शिव हरि के साज पर। और ये शिव हरि यही दोनों ने फिल्म, क्या नाम है, दिमाग से निकल गया अभी था, अच्छा अभी हाँ, फिल्म सिलसिला में ये दोनों भी साज बजाए थे। चलिए उन्हीं की साज पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

तू मेरे सामने या लता जी और उदित नारायण मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये। जी हाँ, इस तरह से आ रहा है, क्या ख्याल है? मेरी कुमार सानू और अलका याग्निक फिल्म बाजीगर में

फिल्म बाजीगर में से निकाले ये टाइटल सॉन्ग पेश किया गया फावनी हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए हैं। प्रेम प्यार की मोहब्बत की बातें, दूर जाने की बातें, बुलाने की बातें, बहुत सारी बातें हो चुकी प्रेम प्यार मोहब्बत में। लीजिए मैं कपड़ों की बात करूँगा तो आप सोच रहे होंगे अरे गंगा क्या हुआ तुम्हें बुखार लगा? जी नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ थोड़ा गला में खराश है लेकिन ठीक है। चलिए मैं कपड़ों की बातें कर रहा हूँ, अगर जब कपड़ों की बातें हुई तो क्या ख्याल है?

0: जी क्या बात है, सुनिधि चौहान, सुनिधि चौहान आपको भी सुनाए हैं। चाहो जाए दिल्ली चाहे आगरा, नहीं करना झगड़ा क्योंकि मिलेगा घाघरा, तो क्या ख्याल है। चलिए अगला गीत, अगला गीत हम चलाने वाले हैं, चलते हैं इस तरह से, सुनिए। ये भी एक धमाकेदार गीत है।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
2: नागिन से बल खा के।
1: हाय हाय हाय हाय हाय।

वह क्या बात है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। बिहार लूटने के बाद क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊँ?

0: כתוב. תן לי כמה בדויק, כמה בנדרו, בסלום, על תפיסה.
1: अच्छा तो ये वाक्य आपने सुने ना जब पड़ोसी के चूल्हे में आग लगी ले भाई ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है देखा जाए फिल्म जीत का, फिल्म जीत में से निकाले हैं, चलो सुनते हैं ये गीत।

वाह क्या बात है यारा ओ यारा, आपको सुनाया गया फोन के कार्यक्रम में। और गाने वाले थे अलका याग्निक जी और विनोद राठौर। चैनल पर आप चून हैं, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम आगे चला रहे हैं और आपको सुना रहे हैं ये गीत, इस तरह से आ रहा है।

कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, आप थोड़ी रेस्ट कर लिए होंगे यानी थोड़े आराम कर लिए होंगे, अगर आराम कर लिए हैं तो लीजिए, हम आपको फिर एक बार स्पोर्ट्स हॉल से दूर रखते हैं ना, इस तरह से सुनिए।

कोई बता दे ये दिल है यहाँ और दर्द भी वही होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है और ये गाना मैं चली आप सभी लश्कर के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली मैं चली, और कहाँ चली आप तो अपने जानते कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है। कहते हैं कितना हसीन है मौसम, और मौसम कब हसीन होता है जब अगर आपके दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है। तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा, चाहे जो भी मौसम होगा, लेकिन आपको हसीन जरूर लगेंगे। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में ओल्ड रोमांटिक हिट्स दोस्तों, कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आप के साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम के ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आज़ाद का ये फिल्म नई खतीन 55 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले और जाने कहाँ, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

बसे ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां और आपके जुल्फों भी क्या इतनी सुंदर है हमारे दोस्तों। फिल्म तीसरी मंजिल का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग के सुनाया है और इसमें काम किया है शमी कपूर जी और हेलन जी और गाना को गाया है भाई आशा मोहम्मद रफी जी और आशा भोसले। दोस्तों हम चलते हैं अगला गाना का ओर, वो है मेरी हमसफर लता जी और मुकेश जी की ओर हम चलते हैं और इसमें ये गाना भी एक बहुत पुराना फिल्म है भाई और आप लोग को हम सुनाते हैं मेरे हमसफर फ्रॉम लता मुकेश जी।

मेरे हम सफ़र हो मेरी हम सफ़र, लता मंगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भू मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बई, नेहा दीन फिर सस्ता का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब कयामत होगी, मिस्टर एक्स बम्बई नेगेटिव 64 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं। और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता की ओर हम बढ़ते हैं, जो भी महबूब मेरे के गाना है पत्थर के सनम नेगेटिव 64 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

Film पत्थर का सनम, पत्थर के सनम नई गति सेफ ने इस गाना को हमने निकाला है जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए

जिसे पद पे चला उस पद पे मुझे, मुझे लता जी फिल्म के नाम है, यादगांठ से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों, हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन बुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार, उस दिन ये आंखें क्या होगा। सुनने वालों, आपने खुद ही सुना है, हम चलते हैं, ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में शमाई है। और ये फिल्म, ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे, मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई, और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और होल्डर बर्मन के साथ में, और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना, नेहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 20 तक 7 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दोस्तों और अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और हमारा प्रोग्राम पुराने नंबरों की बहार प्रोग्राम यहाँ से चलते हैं और अपना पुराने गाने की ओर हम बढ़ते हैं और चलते फिल्म अनमोल की ओर निखनती निखने शस्त्र का भीगा भीगा बदन और भीगा भीगा बदन और मेरा चंदन की तरह महकते हैं फिल्म अनमोल मोती का ये गाना दोस्तों आओ मिलकर हम सुना जाए।

और क्या दोस्तों, इस गाना बहुत पुराना गाना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और ये छोटी सी मुलाकात जो है, और ये विजयंती माला उत्तम कुमार का ये गाना है, और ये पुराना गाना हम आपके लिए यहाँ से चलाते हैं।

और छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और प्यार में क्या क्या हो जाता भैया, छोटी से ही मुलाकात में प्यार हो जाए और बड़े मुलाकात में मार हो जाते हैं, होता है ना। और हम प्यार का सौदा कर बैठे विजयंती माला और लता मंगेशकर फिल्म जिंदगी, जिंदगी का ये गाना है निखिल होंदत और फिरन शस्तक का, जिसमें राजेंद्र कुमार राजकुमार विजयंती माला जीवन महमूद हेलेन ने, और इसमें काम किया है हमारे दोस्तों।

हम प्यार के सौदा करते हैं। और एक बार दोस्तों और प्रकाश और ये गाना है ओ राधा तेरी बिना, और ये मस्त भरी गाना है फिल्म राधा का सनम, गोविंदा जुही चावला ने इसमें काम किया है। और आओ मिलके इस गाना को आज हम सुना जाए, ये इसमें कौन सा मजा है दोस्तों।

अपना यही है। ओ राधा तेरे बिना क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों और ये गाना जो हम आपके लिए अब चलाते हैं, ये भी एक बहुत पुराना गाना है, कोई प्यार की देखे जादूगरी। ये भी एक फिल्म है जो अभी हमारा पैदाइश नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन जितनी पुराना ही गाना है उतने मजा उसमें है। हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे लिस्टनर्स, आओ मिलके और सुना जाए ये क्या है।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक 7 8 फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दोनों मिलके आपको सुनाए हैं। चलिए लता जी के पास बाद पास नहीं बाद लता जी के बाद लता जी और मन्ना डे है। जी हाँ, इन दोनों के ये प्रेम कहानी चलिए हम आपको सुनाते हैं। इस तरह से मन्ना डे जी और लता जी फिल्म

लता जी और मन्ना डे जी आपको सुनाए भी हमने पेश की ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो

ये हमें तुम बुलाओ, फिल्म प्रोफेसर में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साज पर निकली तुई से सिख का ये गीत लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की। ये अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये इस तरह से है।

0: लो ये कली मुस्काई टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। चलिए अगला गीत हमने प्लेयर में रखे हैं, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, ये गीत इस तरह से आ रहा, गीता रॉय जी निकित इंद्रिय फैफ थे, पुरानी गीत है, फिल्म बाज में से निकाले हैं, क्या ख्याल है?
1: जरा

ये जिंदगी दीवाना कर दे, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुना है, फिल्म बिंदियाँ बिंदियाँ में से निकाले हैं नेहतिन शशक का ये गीत, और हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो ये है, इस तरह से आ रहा है, देखते हैं।

फिल्म भाई भाई में से निकाले हैं और ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं और बढ़ते हैं फिल्म कन्यादान की ओर। फिल्म कन्यादान बहुत लोगों ने देखे हैं, कन्यादान में बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। निकिती निघ्न शस्त्र का ये फिल्म है शंकर जय किशन के साज पर। चलिए लेकिन ये गीत आप कम सुनते होंगे क्योंकि कम शायद चल रहा होगा। बहरहाल कन्यादान का ये गीत हम आपको सुनाते हैं।

पराई हूँ पराई मेरी आरजू ना कर, लता जी की आवाज़ में फिल्म फिल्म फिल्म कन्यादान में से निकाले हैं नीक तीन नीक ने सस्तोनी सौ उनहत्तर का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर हमने पेश की ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: जले।
1: रफ़ी साहब आपको सुनाएं शमा जले या ना जले, ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हमने प्लेन में रखे हैं माइति मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म है जिंदगी और तूफान निगिन फैफ सैफ तक 1975 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर। बहुत दिन हुए ये गीत हमने भी नहीं सुने हैं और शायद आप भी नहीं, और अगर सुने होंगे तो मेरी बैड लक है, मेरी बदनसीबी है। बहरहाल चलिए ये गीत हम आपको सुनाते हैं इस तरह से। ये गीत की शब्दें जो है, जी हाँ, इसके शब्द पर अवश्य ध्यान दीजिए, बहुत प्यारे शब्द हैं और बहुत मतलब भरी। हिंदुस्तानी में लोग सलामी बोलते रही समझो या के मौत, सुन लीजिए।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियन साहब को सुनाए ये गीत हमने निकाले हैं। देखते हैं फिल्म जिंदगी और तूफान में से 1975 का ये गीत हमने पेश किए। चलिए एक गीत हम आपको सुनाते हैं और वो ये है, इस तरह से आता है।

गीत गाया पत्थरों ने, यहाँ टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाए हैं फिल्म में गीत गाया पत्थरों ने, रामलाल के साज पर महेंद्र कपूर जी और आशा जी दोनों मिलके आपको सुनाए। और अगर मैं गलती नहीं बोलूँगा तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये जितेंद्र जी की पहली फिल्म थी। जी हाँ, जितेंद्र की पहली फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने, और उसी में से हमने निकाले हैं। जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जो देन हाग शहर से प्रसारित हो रहा है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और क्या ख्याल है, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म होली आयरे में से निकाले हैं नेगेटिव सेफ इंतख का ये गीत है मैं तो मुकेश, इस तरह से

माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हमने प्लेयर में तीन गाने रखे हैं, जी हाँ तीन गाने चार गाने रखे हैं। अब सोचता ये हूँ कहाँ शुरू करूँ, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत आप सुनिए, फिल्म दो बदन में से है।

नैनों में बदरा छाए, ये गीत हमने निकाले हैं मदन मोहन के साज पर मेरा साया में से, और हमने पेश की हो फरफाहन हिंदुस्तानी रेडियो। एक गीत हमने और प्लेयर में रखे हैं, ये सुबह के लाली के जिक्र कर रहा है। अब ये मुझे पता नहीं है कि सुबह ये गीत चलाना चाहिए या शाम को या दोपहर को या रात को, ये पता नहीं है, क्योंकि ये गीत मेरे दिमाग से निकल गया। इसका धुन कैसे है, बात कैसी है, आशा जी एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुना रहे हैं। फिल्म है अभी तो ये, अभी अभी तो झीले हैं, अभी तो झीले में से निकाल रहे हैं निकति सैफ न सैफ तक। चलो सुनते हैं, चलो एक बार मैं भी बेवक्त के शहनाई बजा दूँ।

तू लाली है सवेरे वाली, फिल्म है अभी तो जी लें। नीगती सैफन सैफन तक आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए। दरअसल में ये गीत हमने पहली बार चलाया, पता नहीं धुप्पल में कैसे मिल गया। इसका म्यूजिक डायरेक्टर है जगमोहन बख्शी और सपन सेन गुप्ता। मुझे इस फिल्म के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब हमने सुन लिए, देख लिए और जान लिए, तब ढूंढेंगे ये फिल्म कि कैसा फिल्म है ये। अभी तो जी लेने नीगती सैफन सैफन तक ये गीत हम आपको सुनाए ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

है इसी में प्यार की आबरू, मदन मोहन के साज पर लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। मैं भी एक गीत बैठ के बहुत दिनों बाद सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। इतने खो गए थे इस गीत में कि हमने भूल गए ये गीत मिल चुन करने को कि ये गीत कैसा है। चलिए हम आपको सुनाते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसा गीत है।

बस महालक्ष्मी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत उर्फ आहून हिंदुस्तानी रेडियो। अगला गीत, जी हाँ, अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है, अराउंड द वर्ल्ड। जी हाँ, मैत मुकेश और शारदा जी।

मैं मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस शारदा जी के साथ अराउंड द वर्ल्ड में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साज पर ये शानदार गीत, प्यारा गीत हमने पेश की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं। क्या ख्याल है, सुन लीजिए इस तरह से।

सदा रहे हैं, सदा रहेगी, रफ़ी साहब ने अपने प्यार का इजहार की। इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, चलो सुनते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, अगर तुम रात कहोगे तो हम रात कहेंगे, अगर जो दिन कहो तो हम भी दिन कहेंगे।

हाँ, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे और कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर कहो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। बहरहाल ये गीत सुना आपने माइक मुकेश की आवाज में है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं इस तरह से।

0: रूप तेरा मस्ताना, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में www.fawnfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। इंटरनेट रेडियो या वीफी रेडियो पर आप चून हैं, तो जहाँ भी आप होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? दरअसल में ये गीत हमने चून भी नहीं किए, तो मुझे भी नहीं पता इस गीत के बारे में। और बहुत दिन हुए हमने टेक्स्ट पढ़े हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते ये गीत कौन सा है। तो हो सकता है शायद आपको पता हो, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। हाँ, इतना तो पता है कि मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।
1: अरे गौरी, अरे गौरी, तुम हवा में कैसे पहुंच गई?
2: ये सब क्या? उतारो मुझे, नहीं तो मार
1: दूंगी। ठहरो, अरे मैं कुछ करता हूँ, ठहरो तुम।
2: जल्दी करो, उतारो।
1: ठहरो,
2: अरे मेरी मैया, तूने तो मेरी टांग ही तोड़ दी, अब मैं घर कैसे जाऊंगी?
1: अरे तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले चलेंगे।
2: तुम तो उठा लोगे, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे?
1: अरे गांव वाले क्या कहेंगे, यही कि चंदन अपनी होने वाली दुल्हन को अपनी बाहों में लिए घूम रहा है।
2: छोड़ दे मुझे, हट बेईमान कहीं का।
1: अरे

माइति मुकेश, माइति मुकेश और साथी मैं आशा जी आपको मिल के सुनाए हैं यह गीत और हमने पेश की फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। महेंद्र कपूर जी, चलो सुनते हैं आपको क्या सुना रहा है।

जब याद किसी की आती है, पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए, कार्यक्रम में आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर जो मैं यार आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।

दिल में किसी के प्यार का लता जी की आवाज़ में सुनाया गया, जबकि आप उपस्थित हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर चून है, चून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, हमने चुन कर ये गीत रखे हैं। जी हाँ, बस आ रहा है ये शानदार गीत। इस तरह से

Mighty Mukesh, the heartthrob of millions, all Lata Ji Saadi. और शानदार गीत हमने पेश की, जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके आपके लिए हमने गीत ये रखे हैं, क्या ख्याल है? बस इत्मीनान से ये लवली गीत सुनिए।

रफ़ी साहब और शारदा जी मिलके आपको ये द्वैत सुनाए जब भी ये दिल उदास होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि राज कपूर ने कहा कि राधा आज सिर्फ गाएगी भी नहीं लेकिन नाचेगी भी, तो आप सोच सकते हैं मैं कौन सा गीत चलाने वाला हूँ, और नहीं सोचे होंगे तो इस तरह से आ रहा है शंकर जय किशन के साथ पर।

माइती मुकेश जी और लता जी ये दोनों मिलके फिल्म संगम में से सुनाए हैं आपको ये शानदार गीत शंकर जय किशन के साथ पर। कहा जाता है ये पहला फिल्म था जो देश से बाहर बना संगम, लेकिन मुझे इस पक्का पता नहीं है क्योंकि मैं दुविधा में हूँ। सिंगापुर बना था शमी कपूर का या राज कपूर का संगम, बहरहाल ये गीत हमने चलाए हैं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म मुद्दत में से निकाले हैं जी हाँ, आशा जी और मोहम्मद अजीज़।

मुद्दत में से निकाले हैं आशा जी और मोहम्मद अजीज जी। जब मैं कहूँ बूंद जो बन गई मोती निकली सेफ न सस्त, मैं तो मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी, तो क्या ख्याल है अगर ये गीत मैं आपको सुनाऊँ इस तरह से।

हाँ मैंने भी प्यार किया, मैं तो मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाए हैं, गीत रखे हैं, तो चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं। प्लेन में जो रखा हुआ है आपका जाना पहचाना गीत है इस तरह से।

बाहों में तेरे मस्ती के घेरे ये गीत सुनाया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर जब आप चुने। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं। जी हाँ, फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं, ये गीत हम आपको सुनाते हैं। चलो सुनते इस तरह से।

घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, ये शानदार गीत चला शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की, फिल्म कलंक में से निकाले हैं। और गाने वाले थे श्रिया घोषाल और वैशाली प्रीतम के साथ पर ये पेश किया गया। चलिए अगला गीत हम सुनाने वाले हैं आपको, और वो ये है

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहेब और लता जी फिल्म अकेली मत जाइयो निकती इंद्रियन सस्तख में से निकाल कर हम आपको सुनाए शानदार फिल्म। चलिए वे वे वे फाउंड एफ एम पिंतनल पर आप चुने जो लोग चुनकी मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

हरिवीराम रुनालैला रुनालैला आपको सुनाए ये शानदार गीत और हम पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। क्या ख्याल है, चलिए सुनते फिल्म काला पत्थर में से, काला पत्थर में से निकाल रहे हैं।

हम बनाएंगे एक आशियां, ये गीत आपको सुनाया गया। लेकिन गलती हमने कहा क्योंकि नंबर बदला हुआ था ना, फिल्म काला पत्थर का नहीं है, लेकिन ये है आरती मुखर्जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए, ये दो पंछी दो तिनके, फिल्म तपस्या में से निकाले हैं, क्योंकि नंबर गलत था इसीलिए हमने पढ़ा नहीं लेकिन कह दिया, क्षमा करना, और फिल्म तपस्या में से निकाले हैं। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है, इस तरह से है।

साथियाँ नहीं जाना कि जी ना लगे, ये शानदार गीत चला और ये दुएट चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम रहेंगे रख प्लेयर में रखे, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। चांद ग्रहण में से निकाले हैं जयदेव के साथ।

0: दिल समझा नहीं है, ये शानदार गीत हमने आपको सुनाए हैं फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल कर जयदेव के साज पर, और इसका म्यूजिक नेकतीन सेफन नेखन तक में निकला। तो आप सोच रहे होंगे नेकतीन सेफन नेखन तक, जबकि मुकेश जी के स्वर्गवास हो चुका था नेकतीन ससन सेफन तक में। बात यह है ये फिल्म बना, रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लड़ाई से ये गीत निकला नहीं, फिल्म भी नहीं निकला। तो बाद में जाकर सोनी म्यूजिक ने इस गीत को निकाला, और पता नहीं ये फिल्म निकला या नहीं, बहरहाल नेकतीन सेफन नेखन तक में जाकर ये गीत निकाला गया सोनी म्यूजिक के जरिए। चलिए अगला बयान हम आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है, और वो है ये भी माइट मुकेश द हार्ट ड्रॉप ऑफ मिनियंस।
1: तेरा प्यार
0: असल में ये एक फरमाइश का गीत है, लेकिन कभी नहीं चलता, इसलिए हम आपको सुनाते हैं।

0: तेरा प्यार से जीवन भर जाए, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए। और हमने पेश की फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, इसलिए पेश की क्योंकि ये गीत नहीं चलता है और ये आशीर्वाद के तौर पर ये गीत को चलाया जाता है शादी विवाह में। हमने चला दी, शायद आप कभी फरमाइश दोगे और बेटी की शादी है तो इसके बारे में चर्चा करना फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो वाले अवश्य जानते हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम और आपको ये सुनाते हैं। बस वाह क्या बात है।
1: Never miss an update.

न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। लता जी आपको सुनाए फिल्म दर्द में से निकाले हैं नीघतिन इन तख्त का ये रोमांटिक सॉन्ग, ये प्यार भरा गीत हम आपको सुनाए फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुने जो लोग चुन के हैं आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको ये क्या सुना रहे हैं वह क्या बात है। मुकेश और कंचन फिल्म धर्मात्मा में से

तुमने किसी से कभी प्यार किया है कंचन और मैथी मुकेश नेक दिन फैफ से ही मिदख धर्मात्मा में से निकाल कर ये शानदार गीत पेश किया गया फोर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो लीजिए इस तरह से लगातार प्रेम कहानियां ये सुनाती हैं।